सिखे सिद्ध का भरोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर हैं दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पर पुस्तक संध्या बादम सेल पूर्ण सबल समादम बत चूट दुपूकन सारम ते पार तिहार तिकारम कल माला दिल कुल लातम देतो की बस सपातम देतान सुप्रम्म कर्म सब भोग में चो कर्म तुम दान तुम चो कावे बिन सा

लख कुड़िया लखदा लख ठगिया पैना मिया रात दिन जीना तक पहो कतिया बमन वटे ओ बकरा रिन खाए सब रखे पाए होए पुराने सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग न टुटई जे तक हुवे जो

स्वीकार करायसी सेवा करे जिसनो हुकुम नायसी मने हुए प्रमाणता कसमे पर मेल पायसी कसमे भावे सो करे मन हो चलिया सो फल पायसी।

0: पहला बहुत रब का प्रलाभ को प्रतरंग न जाए तो जप माली तान मली शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बासन जन तुरका पाई सोदी ने पखंडा नाम ले जाहे करंदा भला पहला
1: मानस खाने करे ने वाद छुरी

कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका टेड़ धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हो गए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाने चौकी ऊपर किसे न जाना देखे चौका कटिकार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो अन असाडा फिटे तन फिटे फिर करे मन जूठे चुनी परेन कहो नानी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस

0: घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ज्ञान अमृत।

0: हारून न तो कोई शस्त्र चीर सकता है, ना ही अग्नि इसने जला सकती है, ना ही जल इसने पिउं सकता है, ते ना ही हवा इसने बिखरा सकती है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सर्वन कर दिया भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री सम्बन्धान् प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे स्वामिनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मन्दिर निर्माणं सांस्कृतिक सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्षक्षेत्रे निजी क्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य

0: देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावि अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिम जनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभावी रूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योग क्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसन्धानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमन्त्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः, घटनायाः प्रारंभिक मूल्यांकनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। CMO कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति, तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। NDRF, अग्निशामक सेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालयः दुखद भवन पतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतन क्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानां असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तर प्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितम् अभवत्। बिहारे गंगा, गंडक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्तिक्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तर प्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ऐसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहा आओ सुन दिया न्यूज़ हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि विद्यक संस्थावां नूं विद्यार्थियों नूं एक जिम्मेवार नागरिक बनाउण ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत नूं नशा मुक्त बनाउण लई 3 सालां दा रोड मैप पेश कीता। कोला मंत्रालय ने पंजाब दे थर्मल प्लांटां विच बिजली उत्पादन घटण करके केंद्र तों कोले दी सप्लाई घट जाण संबंधी मीडिया खबरां दा खंडन कीता। राज जैव भिन्नता बोना अते केंद्र शासित प्रदेशां जैव भिन्नता परिषदां दी 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग चंडीगढ़ विच शुरू हुई। पंजाब सरकार दे वल्लों जलंधर दे आदमपुर विच श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल कीर्तन दरबार सजाया गया। पंजाब विच वोटर सूचियां दी चल रही विशेष तीबर SIR 2026 तहत वक-वक जिलियां दे सारे वोटर वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लगाए गए। गुरदासपुर पुलिस ने 3 वक-वक मामलों विच 2 किलो हिरन समेत 3 नौजवानों नूं गिरफ्तार कीता। 7 प्रमुख ओपेक प्लस देशां ने अक्टूबर लई तेल उत्पादन नीति विच कोई बदलाव ना करन दा फैसला कीता।

नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सोनी सवीर विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत करदे आं। सारयां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां। मैं हां नीतू। कहिंदे ने कि हर सवेर अपने नाल एक नवी उम्मीद लैके आंदी है। बीते कल विच जो भी होया वह साडा तजर्बा बन गया, पर अज दा दिन वाकई साडे लई खास है। असीं चाहिए तां इस नूं शिकायतां दे नाल भर सकदे आं, चाहिए तो मुस्कुराहट, हौसले ते चंगियां सोचां दे नाल इस नूं यादगार बना सकदे आं। इसलिए अज सवेरे अपने आप नाल एक छोटा जिहा वादा करिए, जो साडे वस विच है उस लई पूरी कोशिश करांगे, जो साडे वस विच नहीं है उस लई चिंता नहीं करांगे। ते जिहड़े लोग साडी जिंदगी विच प्यार लैके आउंदे ने उहनां दी कदर जरूर करांगे। सवेर दी पहली किरण दे वांग अपनी सोच नूं भी रोशन रखांगे। किसी दे चेहरे ते मुस्कुराहट लियाउण लई वड्डी दौलत दी लोड़ नहीं हुंदी। कई वार एक मिठा बोल, एक सच्ची दुआ या एक छोटी जिही मदद किसी दा पूरा दिन बना सकदी है। बिल्कुल जी, चेहरे ते मुस्कुराहट रखो, दिल विच उम्मीद रखो ते अज दे इस दिन नूं पूरे दिल दे नाल जियो, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल सवेर दी चाह वर्गी होंदी है। जिन्नी मर्जी गर्म जोशी दे नाल पियोगे ओना ही ज्यादा वह स्वाद देगी। तो हुण इस खूबसूरत नाल इस दिन की शुरुआत करदे हां, क्योंकि वाकई ही एक खूबसूरत दिन तुहाडे वास्ते बहुत सारिया खुशियां खेड़े लेके आया। सो चाह दियां चुस्कियां दे नाल मजा लो इस गीत का।

0: विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन फोन नंबर है 0181-298-3036 ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in
1: सो जी दोस्तों एक बार फिर तुहाड़ा सब दा स्वागत करदे आं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम सोनी सवेर विच मैं हनीतू वैसे अज 7 सितंबर है असी गल कर रहे हां एक अजिही दान दी जो किसी दी जिंदगी दे विच रोशनी वापस लियाउण दा जरिया बन सकता है वह है जी नेत्रदान भारत दे विच हर साल 25 अगस्त तो 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पंद्रवाड़ा मनाया जाता है इस साल 2026 विच ये 41वां नेत्रदान पंद्रवाड़ा सो अज इसका मतलब ये जागरूकता पंद्रवाड़ा अपने आखिरी दिन विच पहुँच चुका है पर इसका संदेश इत्थे खत्म नहीं होंदा क्योंकि नेत्रदान की गल सिर्फ पंद्रवाड़े तक सीमित नहीं होनी चाहिए कई लोग नेत्रदान को लैके मन दे विच भरम रखते हैं पर असल विच नेत्रदान एक स्वै इच्छक अते नेक काम है अख के अगले पारदर्शी हिस्से कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कॉर्निया दे नाल संबंधित जिहड़ा अन्नापन है उस वाले मरीजों की नज़र बहाल करने वास्ते ये मदद कर सकता है 2026 के सरकारी जागरूकता संदेश के भी लोगों नेत्रदान का संकल्प लैन ते इस नाल जुड़े भरम नूं दूर करने की अपील की गई है सो अज इस पंद्रवाड़े के अंतिम पड़ा ते आओ एक बार फिर गल करदे आं अपने परिवार नाल अपने दोस्तों के नाल अपने मित्रों के नाल कि साडा एक फैसला किसी होर दी रोशनी की नवी उम्मीद बन सकता है नेत्रदान के बारे सही जानकारी लवो अपनी इच्छा अपने परिवार को दसो तो अधिकारिक तौर पर आई बैंक या फिर सेहत संस्था के राही इस बारे जागरूकता जरूर हासिल करो क्योंकि जीवन तो सारे ने जीना है पर जे साढ़े जान तो बाद भी किसी की दुनिया रोशन हो जाए तो इस तो वड्डी सेवा होर की हो सकती है सो नेत्रदान एक संकल्प है किसी लिए रोशनी की उम्मीद है सो तुसी भी किसी के वास्ते रोशनी जरूर फैलाओ अखां दान बारे जागरूक जरूर होवो क्योंकि तुहाडियां ये दो अखां चार बंदियां नूं नवीं जिंदगी दे सकदियां ने किवें बई ये तो हुण तुहानूं डॉक्टर दे कोलों ही जाके पता लगेगा पर एक गल पक्की है कि तुसी अपनियां इन्हां अखां दे राहीं दूसरियां दी जिंदगी दे विच रोशनी जरूर भर सकदे हो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है।

0: उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है, स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation.

0: innovation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
2: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस क्लब प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
3: देश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे में अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
4: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717117 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी xper@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया।

0: देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज स्पेशल बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders ministerial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 7 years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
3: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Sri Venkateswara College of the University of Delhi will remain closed today in the wake of the tragic building collapse. The All India Institute of Medical Sciences AIIMS said that it received 11 patients who sustained injuries in the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Of the 11 patients, 5 were brought dead to the trauma center, while another patient who was in critical condition later succumbed to his injuries. According to the AIIMS, 3 patients have been admitted and are undergoing treatment. One patient underwent limb surgery, while another who sustained minor injuries was discharged after being kept under observation. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification on reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program, while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aim to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It said the reforms should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah will chair 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. The meeting has been organized by the Interstate Council Secretariat of the Ministry of Home Affairs, MHA, and hosted by the Goa government. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from a correspondent.
4: Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, will participate in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the center and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level can be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's Police Colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
2: This is Akashwani giving you the news.
1: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
2: The seven core OPEC plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman, met virtually yesterday to review global market conditions and outlook. They decided to keep its

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: तो लो जी दोस्तों, ब्रेक तो बाद एक बार फिर करते हैं थोड़ा सारिया का स्वागत। सुनते हैं जी अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ के गाया हुआ।

0: जदू जदू भी बने रे भुलिका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: ते लो जी दोस्तों, मनजीत जगजीत फिल्म दे विच तुसी गीत सुन रहे सी आशा भोंसले दी आवाज़ दे विच। सुनदे अगला गीत फिल्म नौटी जट्स दे विचों गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ दे विच गाया होया।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुढ़े अते जवान सौ गल्ला दी एक गल सही
1: सिर्फ पैसे भेजन लई क्यू आर कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है पैसे मिलन लई नहीं
2: आरबीआई कहंदा है क्यू आर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पाउंदे समय थोड़ा ध्यान नाल

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक

0: नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सो जी ब्रेक तो बाद गज़लां दी इस खूबसूरत महफिल दे विच एक होर प्यारा पड़ा लेके हाजिर हाँ मैं नीतू। सो तुसी सुन रहे हो कुछ गज़लां कुछ एहसास जो अपने दिल दे विचों निकलते रहे, क्योंकि गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती महसूस भी की जाती है। कदे ऐसा एक शेर बीते पलों की याद करवाता है, तो कदे कोई धुन चुप चाप दिल की गल कह जाती है। तो अगली गज़ल बिल्कुल जी एक इहोजिहा एहसास है। किहड़ा एहसास है आओ सुनते हाँ असी भी ते तुसी भी।

0: सो ये सन न्यूज हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
1: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो है अभी ठीक स्थिति में है। उन सभी के पेरेंट्स जो है हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है।
2: इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69.38 अंक गिरकर 76,446 पर और निफ्टी 14.55 अंक गिरकर 23,883 पर कारोबार कर रहा था। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश

0: का अनुमान व्यक्त किया है। आज आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज। अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वालों प्यार भरी नमस्कार।

दुनिया च बंदे साडे वरगे नहीं होने, दुनिया च बंदे साडे वरगे नहीं होने, मैं ते मेरा बापू सारे पिंड नालों सोने, मैं ते मेरा

आप तो पिंड कबूल शाह खुबन जिला फाजिल का तो वधावा सिंह बलकरन तन्नु पवी जस्सी इन्होंने अपने पूरे परिवार नाल हाजरी लवा ली है जी। सुनेहा भेजा है सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज ते पिट्टा बजाज अगला सुनेहा प्रोग्राम च पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुलजोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर हरप्रीत कौर गगनदीप सिंह सारे ही साढ़े तक पहुँच गए ने जी। भैन भरा जड़े आस पास रहने वाले ने तुसी उन्हों का भी नाम लिख के भेज दो असी जरूर पढ़ांगे। अगला सुनेहा पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यसिका माता विद्या देवी सारा ही मायल परिवार हाजिर। टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद नवदीप चतरत अर्नव चतरत लाजवंती ते अनीता राणी गांव टाणीलाल खान नोहर तो जावेद खान अरमान खान इमरान खान सीमा बानो विनोद खान और पंजाबी गीत बिल्कुल जी ये पंजाबी गीतां दा ही प्रोग्राम है। प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी च अगला सुनेहा साउथ अवेन्यू अबोहर तो जसपाल भारती वीना भारती सुरिंदर मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी ते दानेवालिया सारा परिवार हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो इन्होंने सुनेहा भेजा है पिंड साबुआणा फाजिलका तो करण कंबोज चरण रियांश मानव ते परीश कंबोज। अगले सुनेहे नाल प्रोग्राम च हाजरी लवाई है जी सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल कुमार विनीत कुमार सोनम वर्मा ने भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीमपा कपिल ईशान ते पूजा परिहार और प्रोग्राम च आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरव साइना निवान शर्मा ने भी हाजरी लवा ली है जी। और मजनू का टीला तो पहुंचे अपने सुनेहियां दे नाल कमल बालूजा मधुक सागर और सतना एमपी तो उमंग मलिक आकांक्षा ते माही मलिक। प्रोग्राम च अगला गीत सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दियां आवाज़ां च तुहाडे रेडियो सैट ते

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो प्योर सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू भाविक सिक्का। प्रोग्राम च श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत जग्गूताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचिव देशमुख, प्रथमेश सरवत, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख। इन्होंने सानू सुनेहा भेजा है मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद तो, और सारा समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार इन्होंने हाजिरी लवाई है जी धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम च। मारहरा दरवाजा एटा तो नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशव, रसीद वारसी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन तो, जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। बिल्कुल जी, तहे दिल तो साढ़े वालों भी शुक्रिया। अगला सुनेहे दे नाल पूरे दिल दे नाल पहुँच के जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलवीर सिंह। ऐदा दी गल नहीं, इन्होंने कल्ले दिल नहीं भेजे, गुलाब दी खुशबू भी आई है। और अगला सुनेहा स्वर्ण सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो, इन्होंने सुनेहा भेजा है प्रोग्राम च। अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचा अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो, अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो, और अपने साथी मैंबर मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा दे नाल ए प्रोग्राम दे विच इन्हां ने हाजिरी लवाई है जी। महस गेट नाभा तो नाम भेजे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत और धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम च। अगला सुनेहा साढ़े तक भेजा है पंचकुला तो, वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्या, लव लाइन, अंजलि, एंजल, नेहा, शुभम, लवली, गुरमीत और सारा ही प्रजापति परिवार इन्होंने हाजिरी लवाई है जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी च। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, इन्होंने मैसेज साढ़े तक पहुँचाया है गांव जाखोद राजस्थान तो। प्रोग्राम चगला सुनेहा साढ़े तक पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो भेजण वाले स्रोते ने जी मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड तो साढ़े तक सुनेहा भेजा हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। और प्रोग्राम चगला सुनेहा अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, मेहर नगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र तो, बदलापुर मुंबई तो, प्रणीता, सिद्धांत, लाडला टुक टुक गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो, वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। और तुहाड़े सारयां दी रली मिली पसंद ते पेश कर रही हां सुरेंद्र कौर दी आवाज़ च गाया होया एक गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी और धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम च अगला सुनेहा पढ़न जा रही हूँ। कुड़ी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी ते बेबी बॉय हिमाक्ष। धमक जलंधर पैंदी का अगला सुनेहा विजय तंवर ते ममता मुंडी खरड़ तो। गां मुगाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती राणी राघव हरमन ते इन्हां दे सारे परिवार दे साथी मैंबर भी पूरे समय नाल इन्हां ने सुनेहा भेज दिता है। जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकिस्ट्रो रोजी पल ते विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो इन्हां ने साढ़े तक सुनेहा भेजा है। संदीप मक्कड़ ज्योति मन्नत भरत मक्कड़ धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौंक गोराया तो इन्होंने साढ़े तक अपना सुनेहा भेजा है। प्रोग्राम च अगला फरमाइश जड़ी साढ़े स्रोत्या ने भेजी जयपाल यादव इंद्रपाल राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेणु और रोनिका यादव ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश तो गीत सुनना चाहते ने डॉली गुलेरिया की आवाज़ च और इस गीत नाल होर नाम शामिल कर रहे हैं बंसी लाल संधू पोतरे कबीर और

0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने EFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम वसदे।

0: मगर काली दे अग्गे टोए ही होंदे, सच है। कुछ सबर संतोख अपने मन च रखना चाहिए, हर चीज का एक टाइम होंदा ते उस टाइम ते ही मिलती है।
1: कभी वेले समय च आरती जी ने कोई गीत नहीं गुनगुना के सुनाया?
0: बहुत सुनांदे रहिदा जी।
1: केड़ा गीत सब तो ज्यादा तुसी सुनांदे हो उहनां नूं?
0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: एदा सुनांदे हो?
0: नहीं नहीं,
1: किदा सुनांदे हो फिर?
0: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
1: अरे वाह।
0: संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: क्या बात है, तो गुलाबी अखा वाली ने मैं कभी सुनाया गीत इन्हां नूं? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ?
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਤਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
2: ਜੀ ਮੀਨੂ ਜੀ, ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ।
1: ਜੀ
3: ਦਰਸ਼ਕੋ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
4: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।
5: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
6: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
7: ਯੋਜਨਾ ਉਨ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਪ ਜਬ 60 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਂਗੇ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਤਾ ਸਕੋ।
6: ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 9,50,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਗਰੰਟਿਡ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
8: हेलो,
9: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
10: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट लिए रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: लो जी, ब्रेक तो बाद असी फिर हाजिर हो गए अपना प्रोग्राम वसदी वड़े लैके। जी
11: जी जी प्रभु जी, जदों भी असी माइक दे उत्ते बैठे हुंदे आ ना, तां मैनूं कई बार लगदा है कि साडी ए देन जिहड़ी है ना, सानूं जिहड़ी ए देन है बोलण दी, सुनण दी, देखण दी या किसी भी चीज़ नूं महसूस करन दी, इहदे विच टीचर्स दा बहुत वड्डा रोल है।
2: बिल्कुल जी, कहिंदे कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलदा सानूं, है ना। और असी हुणे ही 5 तरीक नूं अध्यापक दिवस मना के हटिया। वैसे तां देखो हर रोज़ जिहड़ा है ओह अध्यापक दा दिन है, क्योंकि हर रोज असीं सीखदे आ। जे असीं कहने आ कि साडे पेरेंट्स जिहड़े ने, मां बाप जिहड़े ने, ओह साडे गुरु ने, ओह पहले गुरु ने, मां साडी पहली गुरु है, पर अध्यापक दे नाल नाल जो सानूं सिख्या अध्यापक दे सकदा है कोई नहीं दे सकता।
11: सो मेरे कहने का मतलब यह कि सारे पेशियां दी नीं ही अध्यापक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विज्ञानी, अधिकारी, जो कोई भी होर पेशा होवे, हर कामयाब इंसान दे पिछे एक अध्यापक दी मेहनत ते सिख्या जरूर होंदी है।
2: बिल्कुल जी, और इस मेहनत ते सिख्या दे नाल ही असी बहुत कुछ अध्यापक तो सीखदे आ, है ना। और असी तां ही अध्यापक दिवस मनांदे आ कि तुहानूं सानूं कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने ओह पता चल सकन कि समाज दे विच अध्यापक दा की भूमिका रहिंदी है, की रोल रहिंदा है।
11: सो इस वास्ते अज असी जिहड़ा अगला सिलसिला पेश करन जा रहे हैं कि अज दे युग विच अध्यापक दी भूमिका।
2: बिल्कुल जी, पिछले दिन ही साडे कोल सरताज सिंह आए सन जी, और ओ स्टेट अवार्डी ने, उन्हां नूं स्टेट अवार्ड मिलिया। स्टेट अवार्ड उन्हां नूं क्यों मिलिया, केड़े केड़े काम, केड़े केड़े कारज जिहड़े ने ओ उन्हां ने कीते ने
11: जी,
2: ते अपने स्कूल दा किस तरह नाम रोशन कीता है, इस करके उन्हां नूं स्टेट अवार्ड मिलिया। और सरताज सिंह नाल पूनम होना ने बहुत सोहणियां गल्लां बातां कीतियां और दस्या कि किस तरह इन्हां ने इन्हां दी भूमिका की है समाज दे विच।
11: बिल्कुल,
2: ते फिर आओ फिर सुनिए इन्हां दे नाल कीती होई कुछ गलबात।
11: जी सुनदे आ।
12: कहिंदे ने कि विद्या मनुख दा तीसरा नेत्र है, ते साडे अध्यापक

0: करनी बच्चे ने, क्योंकि पिछले 20-25 साल तो पढ़ाते हैं, मैंने पता लग गया। तो मैं बस उत्थे पॉइंट आउट करना, बेटा इतने तुम गलत जी। हूँ चैट GPT ने सोल्यूशन तो कर दी, पर चैट GPT ने यह नहीं दसना भी तुम इतने गलती करनी है। वो गलती करने लिए दसना फिर सानू ही पैना, सानू प्राइमरी ही रहना पैना। सो टीचर की भूमिका जी है ये उस हिसाब न जी चेंज होंगी जा रही पी। टीचर इनोवेटिव होना पैना, हर मैथड उन्होंने यूज़ करना पैना। कभी कोई गेमिंग मैथड वरत लिया, कभी कोई TLM वरत ली, कभी कोई प्रोजेक्ट मैथड मैं बहुत इस्तेमाल करना जी, प्रोजेक्ट मैथड। तो यह सारे मैथड वरत के ही हूँ आप बच्चे दे नाल नाल उन्हूं जिहड़ा अगे लैके जा सकदे
1: हां। यानी कि असी इस मशीनीकरण दे युग दे विच, आधुनिकरण दे युग दे विच इन्ना भी अगे नहीं वध जाना कि असी व्यक्तिगत तौर ते एक दूसरे नाल जुड़ ना सकी, एक दूसरे दीआं गलतियां नूं नोटिस ना कर सकी ते कुछ नवा सिरज ना सकी। ते जदों असी टैक्नोलॉजी दे विकास दी गल करदे हां जो कि अजकल बहुत ज्यादा है, उत्थे तुसीं बहुत वधिया गल कीती है कि किवें अपनी एक चंगा अध्यापक भूमिका दर्ज करवा सकदा है।
0: जी बिल्कुल।
1: ते बहुते अध्यापक टेक्नोलॉजी दा खुद भी सहारा लैंदे ने, ते कई बार इंज भी हुंदा है कि कुछ क लोग टेक्नोलॉजी ते ही डिपेंड होके रह जांदे ने।
0: बिल्कुल मैम, इदां हुंदा है जी। टीचर्स कई बिल्कुल देखो, एक बार जो आप कोई चीज़ देख लें तो सानू आसान लगती है, तो फिर आप मदद लें कि इस टेक्नोलॉजी ना सारा कुछ ही हो जाए
1: जी,
0: तो उत्थे आके फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर टीचर खुद ही डिपेंडेंट हो जाता, तो फिर बच्चे नू विकसित किवें करेगा, बच्चे नू किदां डील करेगा क्लास दे।
1: सरताज सिंह जी, तुसीं गल कीती सी कुछ इहो जिहे प्रबंध कीते ने जिसे नाल कि जो वेस्ट मटीरियल है या फिर उन्हां नू होर प्रैक्टिकल तरीके दे नाल चीज़ां समझ आ सकन, उस दे बारे जरा होर विस्तार नाल दसो।
0: जी मैडम, जिदा तुम मैंने दसिया कि स्कूल दे विच एक कैमिस्ट्री पार्क बनाया, लेकिन एक कैमिस्ट्री पार्क की स्पैशलाइजेशन यह है कि ये सिर्फ वेस्ट मटीरियल ही स्कूल का वरत्या गया। स्कूल दे विच ही एक साल तक कोई वेस्ट मटीरियल जो बाहर नहीं जान दिता, चाहे वह टुटे बेंच सीगे, पोल सीगे, रॉड सीगे, वड्डियां वॉल क्लॉक सीगियां या कोई होर टायर या योजा मटीरियल सीगा। उसनों बाद विच चॉकआउट किया मैं और मेरे विद्यार्थियों ने कि इहदे तो की बनाया जा सकता है, बस जिदा साइंस ना संबंध होवे या केमिस्ट्री ना संबंध होवे। उहदे आधार दे उत्ते ही उन मॉडल बनाए, कुछ वर्किंग सीगे, कुछ स्टिल मॉडल सी, उन्होंने पार्क विच लगाया। सो पंजाब राज दा पहला केमिस्ट्री पार्क सीगा जिहदे विच कि वेस्ट मटीरियल नूं बहुतात दे विच वरत्या। इस तों बाद अहीं अगला स्टैप किया कि अहीं बायोलॉजी पार्क, मेरे एक फ्रेंड ने स्कूल दे विच कॉलीग ही ने, मेरे स्टूडेंट भी रहे ने प्रभजीत सिंह सर, उन्होंने ना बहुत मेहनती ने, तो उन्होंने रल के असीं फिर बायोलॉजी पार्क जिहड़ा उहनूं चॉकआउट किया कि बायोलॉजी पार्क जिहड़ा उहदे विच वी अहीं मैक्सिमम कोशिश की कि वेस्ट ही वरत्या जाए।
1: ठीक है।
0: और फाइनली अहीं अगला जिहड़ा टारगेट लैके चले उह सीगा कि मेडिसिनल पार्क, ताकि बच्चों नूं मेडिसिनल पौद्यां बारे जानकारी होवे। तो उहदे विच जिन्ने भी पौधे ने, आमला, बहेड़ा या अंजीर वगैरह, सारे कुछ लगाए तां कि बच्चे जिहड़े लागू इन्हां नूं वेख सकण और इन्हां दीआं जिहड़ियां जरूरतां ने जिथे आपां नूं यूज़ कर सकदे हां उन्हां नूं इन्हां दा पता होवे बच्चों नूं।
1: इस लई खुद किन्नी कु तैयारी करनी पई, किन्नी कु मेहनत करनी पई, किहड़े किहड़े तुसीं आइडियाज ईजाद कीते या किन्ने कु स्टूडेंट्स दी या साथियों की मदद ली तुसीं?
0: बिल्कुल मैम, जदों भी आप कोई कार्य आरंभ करते हैं स्कूल वड्डे पद्धर से, तो वो टीचर की जरूरत पैंती पैंती, सहायता की लड़ते पैंती पैंती। और मेरे कोलीग बहुत अच्छे है, सारे ने ही हैल्पफुल ने, चाहे वो मेरे प्रिंसीपल मैम ने, वो ने, मतलब सारे ने ही बहुत ज़्यादा जी योगदान पाया अपना। और बाकी चॉकआउट तो करना ही पैंता है, इधरों उधरों जाके वेखने भी पैंते कि मॉडल बनाई है तो की बन सकता है। सो अपनी इनोवेटिव मैथड्स भी वरतने पैंते हैं। बाकी साढ़े स्कूल के प्रिंसीपल मैम ने ब्लाइंड ने, मतलब वो देख नहीं सकते, तो मैनू ये सीगा कि वह भी मेरे इस मॉडल नू देख तो सकते नहीं पर समझ। फिर ये मैं की किया कि मैं हर मॉडल के उत्ते एक नंबर लगा दिता और अपनी आवाज़ के उस मॉडल बारे सारी जानकारी जी रिकॉर्ड की। मैडम के हाथ से रिमोट फड़ाता, मैडम ने कहा मैडम जी रिमोट दबाओ, थोड़े अगे मॉडल नंबर 4 है। वो 4 नंबर नपते सीते, 4 नंबर नाल उन्होंने उस मॉडल बारे जानकारी मिलती सी। इतों यह भी याद हो गया कि हम आर्ट्स वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, जो समझे कि 4 नंबर दबाना, 4 नंबर, 3 नंबर दबा के किसी मॉडल बारे पूरी जानकारी ले सकती से। सो ये इनोवेशन भी नाल उदों ही जाती, तो मेहनत तो करनी पैंदी है, तो फिर ही जिहड़ा वा कोई भी चीज़ आप बच्चे तक सही तरीके नाल कम्यूनिकेट कर सकते हैं जी।
1: बहुत वधिया गल सरताज सिंह जी, जदों असीं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की गल करते हैं, इहो जिहे तरीके सानूं याद करने पैणगे जो लंबे समय तक इस धरती नूं बचा सकन, साडे काम आ सकन। एक चंगा अध्यापक, एक चंगा जो सिक्ख्यक वह हुंदा है जो बच्चों सिर्फ किताबी ज्ञान दे नाल नहीं जोड़दा बल्कि उन्हां नूं चंगा इंसान भी बनाउंदा है, सिखाउंदा है कि असीं अपनी धरती नूं किवें बचाउणा है। कोई इहो जी घटना तुहानूं याद है कि जदों तुसीं इहो जी तरीके ईजाद कीते या बच्चियां नूं तुसीं व्यक्तिगत तौर ते इन्हां तरीकियां दे नाल जोड़िया, कोई स्टूडेंट दी प्रतिक्रिया या कोई इहो जी रिस्पोंस जो तुहानूं याद रहा होवे?
0: मैम हुंदा ही है, जदों बच्चे देखदे आ घर जाके दसदे आ, एक दिन कुछ पेरेंट्स आ गए ते मैं उन्होंने कहा भी तुहाडी बच्ची दी तो कोई कंप्लेंट नहीं, तुसीं क्यों आए जी? तो उन्होंने कहिंदे कि असीं तुहाडा पार्क वेखण आए। साडे बच्चे कहिंदे भी साडे सर ने पार्क बनाया से।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। दोपहर का 1 बज रहा है। लो हुण हिंदी च समाचार सुनो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे।

0: वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 बजे प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने, कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਲ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा, ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस दौरान इमारत के मालिक विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली विच गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। CMO ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के वसनीकों

0: और मनुष्यात से मुबर्रा मुआशरा बनाने में सरगर्म रोल अदा करें। आज गुवाहाटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने मनुष्यात के खिलाफ अहद दिलाया और नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनुष्यात के खिलाफ जद्दोजहद के लिए पुरअज़्म रहें। नेपाल की कुदरती आफत के खतरात को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक नेपाल तिब्बत में तबाहकुन अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1355 हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां खासतौर से भोटेकोशी और त्रिशूली दरिया कॉरिडोर से मुत्तसिल पन बिजली प्रोजेक्टों में लापता अफराद की खातिर तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नेपाल में सैलाब में जान गंवाने वालों की याद में आज कौमी शोक का एहतमाम किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अखबार मशरक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक उर्दू रोजनामा है, नीज उसके डायरेक्टर और टीएमसी रुकन पार्लियामेंट नदीमुल हक से मुतालिक एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। ईडी ने कहा है कि उसने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये मामला उन इल्जामात से मुतालिक है जिनमें फिरकावराना कशीदगी को बढ़ाने वाले मफाद के इशात और तशहीर का दावा किया गया है। इस मामले में गैर कानूनी लेन देन, बेहिसाब नकद लेन देन और मुश्तबा जराए से फंडिंग के इल्जामात भी शामिल हैं। खवातीन और अतफाल की तरक्की की मरकजी वजारत की जानिब से बुध के रोज नवें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का आगाज किया जाएगा। इस साल इस मुहिम का मौजू है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके तहत आंगनवाड़ी मराकज के जरिए तग़ज़िये को मुस्तहकम करने, सेहत देखभाल और शुरुआत में ही सीखने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह हर सितंबर में तग़ज़िये को अवामी तहरीक बनाने और सुपोषित भारत को फ़रोग़ देने की हुकूमत की कोशिशों के हिस्से के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हो रहा है। इस चार रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में मुनहदम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर और 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जेवियर बेटल के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरैतमाद रिश्ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हां तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो चमत्कार फिल्म दा गीत। आवाजां दित्तियां ने अलका याग्निक ते कुमार सानू ने। इस गीत नूं लिखिया आनंद बख्शी ने और संगीतकार ने अनु मलिक।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत मोहरा फिल्म च लिया गया। आवाजा दितिया ने पंकज उदास और साधना सरगम ने। इस गीत दे गीतकार ने इंदिवर।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं

0: जिनकी जिम्मेवारी थी, चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा, ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
2: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर

0: राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहाँ कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
2: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112317171 2371717106 और 2331444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मेरी वीर 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने, ते नाल दे नाल न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे नाल जुड़ सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने मास्टर सलीम। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज च सब तो पहला तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया।

प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां ते तुसे ट्यून कीता है AIR पंजाब ते बिल्कुल अज बहुत ही खास दिन है। अज है कौमांतरी साफ हवा ते नीले आसमान दा दिन। नीला आसमान बहुत ही सोहना लगता है सारे नू, सारे चाहते नीला नीला आसमान असी देखिए ते सोहनी साफ सुथरी हवा दे विच असी रहिए। ते अज है गए कौमांतरी पुलिस सहयोग दिवस भी। पुलिस दा सहयोग करना साडा एक फर्ज है क्योंकि असी सहयोग करांगे तां ही साडी पुलिस मदद कर सकेगी। ते अज विश्व एडिशन जागरूकता दिवस भी है, मतलब सेहत के नाल जुड़िया भी दिन है। तो ब्राजील का अज आज़ादी का दिन है, तो अमरीका का अज है लेबर डे। तो अज असी स्पैशली गल करांगे साफ हवा के बारे कि साफ हवा तो नीला आसमान करन दे लई असी की करिए ते किदां इसका असी कुदरत का आनंद माणिए। तो चिट्ठियां असी शामिल कर रहे हैं जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो TT मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, तो अनिल, तो जयफिर, तो डॉक्टर अमनदीप, तो इन्हों के नाल कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहल तो बीटा बजाज, तो कोटली कला तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर, हरविंदर, तो रविंदर, मनजीत, तो गुरजोत सिंह। तो पिंड है चतरा तहसील जीरा, तो जिला है फिरोजपुर, जगजीत सिंह चतरा, टहल सिंह, बूटा सिंह, अजीत सिंह, तो हनीक सिंह, जीत सिंह, कुलदीप सिंह गुरसेवक, तो लिखारी सभा के सारे मैंबर साहबान। तो पिंड कैरो, जिला तरन तारण, गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाश के पन्ना, इन्हों का पोत्र है जी गुरु शब्द। तो चिट्ठिया असं शामिल कीतियां, तो खुले आसमान की गल हो रही है, तो चाह पानी की भी गल हो रही है। चाह का भी समा है क्योंकि 3 बजे हुए हैं तकरीबन इस टाइम से अं चाह पीते हैं घर के, तो चाह की भी गल हो रही है, तो नीले आसमान की भी गल हो रही है। कौन की कह रहे सुनते हैं इस गीत।

साफ हवा रखो तो उहदे विच खुद भी साह लो तो होरनू नूं तुसीं साफ हवा दे विच साह लैण दिओ। तो इहदे लई की करो जी, तुसीं की करो, पैदल चलो तो साइकल चलाओ। आखिर क्यों उह असीं दसांगे। तो साइकल तुसीं हुणे कढ लो बाहर, जे तुसीं कितें सांभ के रखिआ वखरा जिहा करके रखिआ कि साइकल ते जावांगे तो साडी बेइज्जती हो जाणी, इंसल्ट हो जाणी आ। असीं तां गड्डी च जाणा आ, असीं तां बाइक ते जाणा, असीं एक्टिवा ते चले जावांगे, पर साइकल ते बिल्कुल नहीं पसंद करदे। तो जे तुसीं नहीं करदे पसंद तां अज तो ही अपनी पसंद नूं तुसीं बदल दिओ, क्योंकि साइकल ते तुसीं जांदे हो जां तुसीं पैदल जांदे हो तो इहदे नाल की हुंदा आ कि तुहाडी सेहत बिल्कुल फिट एंड फाइन रहिंदी आ, तुसीं सेहतमंद रहिंदे हो। तो नालों नाल हवा दे विच भी प्रदूषण घटदे, क्योंकि जो तुसीं वाहनों ते जांदे हो तो वह प्रदूषण फैलाउंदे आ। वाहनों के विचों जिहड़ा धुआं निकलदा आ। तो एक गल होर असीं अपने स्रोतियां दे नाल सांझी करांगे कि कई बार की करदे आ असीं, अपने जिहड़े वाहन हुंदे आ उहनां दी असीं केयर नहीं करदे, तां पोल्यूशन वह भी बहुत ज़्यादा कर देंगे। इस करके उन्होंने असी मेनटेन करके रखिए, उन्होंने सामभ संभाल रखिए, समय समय से असी उन्होंने सर्विस करवाते रहिए, जी हवा आ वह साफ बनी रहे। तो श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा लिख रहे हैं। डब वाली हरियाणा तो जे के बकालिया, श्रीमती सुनीता बकालिया, संजय अनिल, मीनू बकालिया, चंडीगढ़ तो सतीश ते बिमला अनेजा, गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह पिंड तंगोरी जिला मोहाली तो, जिला है फाजिलका, पिंड है बाजीतपुर, भोमा इन्हों का नाम है। तो कहते बलजीत सिंह भी मेरे नाल ने, वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह भी इस चिट्ठी के शामिल ने। फरमाइश सारे की खूबसूरत आवाज है परी पंधेर की।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए भी सुन सकते हो। इस वेले स्टूडियो की घड़ी मुताबक 4:03 ते 32 सैकेंड हो रहे ने। पेश है तुहाडे सारयां दा मन पसंदीदा प्रोग्राम सदाबहार गीत। सदाबहार गीत पेश कर रही तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वालों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल।

कुछ रिश्तों को नामों की ज़रूरत नहीं होती, वे बस दिल की धड़कनों में अपनी जगह बना लेते हैं। जब कोई इंसान आपकी हर खुशी की वजह बन जाए तो समझ लीजिए वही आपकी पूरी दुनिया है। इसी खूबसूरत एहसास को समर्पित प्रोग्राम में अगला गीत साथी फिल्म दा, आवाज़ा मुकेश ते लता मंगेशकर दियाँ। इस गीत नू लिखिया मजरू सुल्तानपुरी ने ते संगीत निर्देशक ने नौशाद।

ढलती हुई शाम का भी अपना एक अलग ही जादू होता है। कुछ रंग आसमान में बिखरते हैं, कुछ यादें दिल में उतर जाती हैं। बस फिर वही शाम खूबसूरत बन जाती है जो किसी अपने की यादों के साथ गुजर जाए। सदाबहार गीत तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम च अगला गीत तुसी सुनोगे कटी पतंग फिल्म चो लिया गया। आवाज़ किशोर कुमार दी, गीतकार ने आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें दिल हमेशा के लिए रोक लेना चाहता है। जब किसी अपने का साथ इतना खूबसूरत लगे तो वक्त के गुजर जाने का डर सताने लगता है। बस दिल यही कहता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सदाबहार गीत द आखिरी नगमा, हम दोनों फिल्म चले आ गया। आवाज़ आशा भोसले ते मोहम्मद रफ़ी दी, गीतकार ने साहिर लुधियानवी और संगीतकार ने जयदेव।

अकाल पुरख प्रभु सारी सृष्टि दा करता तरता है, कुल कायनात उस असीम प्रभु दी आराधना करती है। हाँ, अपने विचार अनुसार विधियां वखो वखरियां हो सकदियां ने, पर सबना दा इष्ट अकाल पुरख है। उस प्रभु दा परापूर्बला नाम सतनाम है। उंज तां उसदे अनेकां गुणा करके नाम भी अणगिणत हन। प्रभु दा नाम मनुखता दा आधार है। नाम कल्याणकारी ते सर्वहितकारी है। ये नाम हर प्रकार नाल सहाई है। साध संगत विच जाके जपिया सारे कारज संपूर्ण हुंदे हन। इस नाम नूं बहुत सारे दृष्टांत दे के वड्याया गया है। नाम डुबदे लई बेड़ी है, बुझ रहे दीवे वास्ते तेल है, अग्नि नूं शांत करन वाला जल, भुख नाल विलकदे बालक लई दुध है, रण खेत्र विच नाम नाल खड़े होण वाला भरा है, भुखे लई आहार, किरसानी लई मेघ है, शेर वांग निडर है, रख्या है नाम। नाम दी उपमा तां बहुत है, प्रभु आप ही उपमा जानदे हो। पवित्र करन वाला नाम सिमर के पवजल तरिया जा सकदा है। राग तिलंग विच उचारे शब्द विच भगत नामदेव जी नाम नू नेत्रहीन मनुख लई डंगोरी बयान करदे हन, ते नाम नू निमाणिया गरीबां दे जीवन दा आधार दसदे हन। सच्चे नाम वाला प्रभु

0: पाप सब त्यागया, दारू नाम लिया, ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन पिया। इस पंक्ति का सब तो सुंदर शब्द है शीतल मन। सानू हर समस्या का हल नहीं मिल सकता, हर मनुख साडे अनुसार नहीं चल सकता, हर हालात साडी इच्छा अनुसार नहीं हो सकती, पर गुरु सानू एक अजिहा मन दे सकता है जो हर प्रकार के हालातों विचकार भी शीतल रहे। यही अंदरली सेहत है। अज साडे कोल सुविधावां बहुत हन पर मन की शांति घट है। साडे कोल संपर्क के साधन बहुत हन पर दिलां विच दूरी है। साडे कोल जानकारी बहुत है पर अंदरली सूझ की घाट है। साडे कोल मनोरंजन बहुत है पर मन का आनंद घट है। असी बाहर की दुनिया नूं बदलण विच लगे हुए हाँ पर गुरु साहब सानू अपने अंदर झाती मारन लई कहिंदे हन। इसे लई अज भी औखद तेरो नाम है उतना ही प्रसंगक है जिन्ना गुरु साहब दे समय सी। नाम औखद नाल जोड़न लई इह फैसला करन दी लोड़ है कि असी नाम नूं सिर्फ दुख दे समय याद करन वाली चीज़ ना बनाईए, सगों जदों दुख आवे तां नाम सिमरीए, जदों सुख मिले तां भी नाम नूं याद रखिए, जदों सफलता मिले उस वेले भी नाम दी याद रहनी चाहीदी है, जदों असफलता होवे तां भी नाम दे नाल जुड़ना चाहीदा है, जदों मन खुश होवे तां भी नाम दे नाल जुड़ो, जदों मन टुटे तां फिर भी नाम नाल जुड़ो, क्योंकि नाम किसी एक हालत दी दवाई नहीं, नाम जीवन दा आसरा है। श्री गुरु अर्जन देव जी दा पावन बचन है, औखद खायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ, ताप गया वचन गुर पूरे, आनंद पिया सब मिटे बसूरे। अंत विच गुरु साहब दे चरणा विच यही अरदास करिए, हे प्रभु दयाल, साडे शरीर नूं तंदुरुस्ती, मन नूं शीतलता अते आत्मा नूं अपना नाम बख्शो। साडे अंदरों होमें दूर करो, क्रोध दी थां खिमा देवो, लोभ दी थां संतोख देवो, डर दी थां भरोसा देवो, चिंता दी थां तेरी रजा विच रहण दा बल मिले अते साडे हिरदे विच अपना नाम बसा दिओ।
1: औखद तेरो नाम दयाल, ये वार्ता सुना रहे सन डॉक्टर अमरजीत सिंह। नाम रूपी औखद दा स्वामी प्रभु आप ही है, क्योंकि सच्चा वैद उही है जो पहला रोग नूं पछाण के अते उस अनुसार पंजा असाध रोगां दा निवारण करता है। सूरठ राग विच फरमान है कि ऐसे सतगुर दे दर्शन कीत्यां इंसान प्रभु नाम दी विचार करता है, उसके जन्मां जन्मांतरां दे रोग निवृत्त हो जाते ने ते सुक्का मन नरोया हो जाता है। ऐसा गोबिंद ही मेरा वैद है जो नाम रूपी औखद जग्यासु दे मुख विच पा के जमा दी फाही कट दिंदा है। सर्व कला समर्थ प्रभु ही लेख लिखता है अते करण करावण हार स्वामी है। आप ही कृपा करके अपने प्यारियां नूं नाम रूपी आधार दे के भवसागर तों पार करता है। मेरा बैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। इस पावन रचना का कीर्तन कीता है भाई रविंदर सिंह अते उनां दे रागी।

किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ फाजिलका, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ कसौली ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6 बजन वाले ने। हुण तों कुछ ही पलां दे इंतजार तों बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों। तुसी साडे आकाशवाणी जलंधर दे सारे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानते हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिस विच होणगियां कम दियां गल्लां। सर्द रुत्तां दियां खुंबां बारे जानकारी देणगे डॉक्टर शिवानी शर्मा। सब्जियां दे कीड़ियां दी रोकथाम इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर परमजीत कौर। कल दे प्रोग्राम दे मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तों इलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते विविधा प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे हिंदी व्यंग वार्ता महाकवि होने की कगार पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दलजीत कौर। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तों। रात 9:30 तुसी सुनोगे पंजाबी नाटक ए वी इतिहास है लेखिका अजीत कौर। रात 10:02 ते प्रोग्राम पेश कीता जाएगा कवि गोष्ठी। आज दी इस कवि गोष्ठी दे विच भाग लैण वाले कवि ने राजवंती मान, महेश कुमार, वरिंदर कुमार ते विनोद गोयल। रात 10:30 तुसी आनंद माणोगे गजलां दा। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। इस तों इलावा हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समें ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वो कितने हैं?
3: तीदा नवा खाता ते मेरी KYC अपडेट।
2: ये तो चटपट वाला काम है।
3: किवें
2: जे KYC दे वेरवे विच बदलाव ने जा सिर्फ पता बदलया है ता रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल ऑनलाइन जा चिट्ठी राही सेल्फ डिक्लेरेशन दे दियो
3: अते बाकी बदलाव
2: घर बैठे वीडियो KYC आधार OTP ते आधार आत eKYC नाल सिर्फ बैंक दे अधिकृत चैनल रही।
3: ये तो नूडल बनान जिन्ना सोखा है। RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग वाल पहला कदम।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्र दी मार्च 2027 तक 300 कृषि विज्ञान केंद्रां दे बुनियादी ढांचे अते लॉजिस्टिक्स नूं अपग्रेड करन दी योजना। पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दे 11 KV दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नूं जमींदोज केबल सिस्टम विच बदलन दे प्रोजेक्ट दा उद्घाटन कीता। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहद पारो नशीले पदार्थां ते नजायज हथियारां दी तस्करी वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं 2 व्यक्तियों नूं 15 पिस्तौलां ते 5 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब विधानसभा दे स्पीकर गुलजार सिंह संधवा ने सूबे दे नौजवानां दा सर्वपक्षी विकास यकीनी बनाउण लई उन्हां नूं खेडां विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण दी अपील कीती। भारत दी शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज दे तीजे पड़ाव विच औरतां दे कंपाउंड व्यक्तिगत मुकाबले दे फाइनल विच पहुंच के भारत लई तमगा पक्का कीता। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। मीटिंग विच राज्यां दी हिस्सेदारी बधा के कृषि विज्ञान केंद्रां KVK नूं मजबूत करन दी कार्य योजना दी समीक्षा कीती गई। मीटिंग मुख तौर ते मार्च 2027 तक 300 तरजीही कृषि विज्ञान केंद्रां KVK दे बुनियादी ढांचे नूं आधुनिक बनाउण ते केंद्रित सी। श्री चौहान ने जोर दे के कहा कि निर्धारित समा सीमा दे अंदर टीचे नूं प्राप्त करन लई राज सरकारां तों सरगर्म हिस्सेदारी ते समय सिर सहायता जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रां दी मुड़ सुरजीती लई केंद्र अते राज्यां विचकार बेहतर तालमेल समय सिर माली सहायता आधुनिक बुनियादी ढांचा लोड़ींदी मनुखी शक्ति अते जिला पदरी कारज योजनावां नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन दी लोड़ है। दिसंबर 2028 तक सारे कृषि विज्ञान केंद्रां विच इनक्यूबेशन ते हुनर केंद्रां दी स्थापना ते वी चर्चा कीती गई। चंडीगढ़ दी बिजली वंड प्रणाली नूं आधुनिक बनाउण अते बिजली सप्लाई दी भरोसेयोगता वधाउण दी दिशा विच इक अहम कदम उठाउंदे होए चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड CPDL ने सैक्टर 1-8 तक 11 KV दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नूं सफलता नाल जमींदोज केबल सिस्टम विच बदल दिता है। करीब 25,000 तों वध निवासियां नूं लाभ पहुंचाउण वाले 12 करोड़ रुपए दे इस प्रोजेक्ट दा उद्घाटन अज पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने कीता। इस मौके ते सीनियर भाजपा नेता श्री संजय टंडन भी मौजूद सन। ए प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के सब तो महत्वपूर्ण अते संवेदनशील खेतरां विच बिजली दे बुनियादी ढांचे दी व्यापक अपग्रेडेशन दा प्रतीक है। इन्हां इलाकियां विच पंजाब अते हरियाणा सिविल सकत्तरेत पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट रॉक गार्डन अते सुखना झील सहित कई प्रमुख सरकारी संस्थावां सैर सपाटा स्थान अते रिहायशी खेतर शामिल ने। इस मौके श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है।

0: लिमिटेड दे 11 केवी दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नू जमींदोज केबल सिस्टम विच बदलन दे प्रोजेक्ट दा उद्घाटन कीता। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहद पार नशीले पदार्था ते नजायज हथियारां दी तस्करी वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं दो व्यक्तियों नू 15 पिस्तौलां ते 5 किलो हिरन समेत गिरफ्तार कीता है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
1: जिंदगी दी दौड़ विच असीं अक्सर चीजां भुल जांदे हां। बहुत चंगा लगता है जदों तुहाडा कोई ख्याल रखता है, जिवें आरबीआई ख्याल रखता है तुहाडी अनक्लेम जमा राशि दा।
2: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब ओ बैंक खाते जिन्हां विच 10 साल जां उस तों वध समय लई कोई लेनदेन नहीं कीता होवे। ए खाते आरबीआई दे डीईए फंड विच जमा हो जांदे हन। अपने बैंक दी किसी भी शाखा विच जाओ अते अपना केवाईसी अपडेट करवाओ अते अपने अनक्लेम डिपॉजिट वापस प्राप्त करो। आरबीआई कहंदा है, जानकार बनो, सतर्क रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:30 बज चुके ने। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

होने के लिए तुम्हारा या तुम्हारे पति का किसी संस्था का अध्यक्ष होना जरूरी है, या तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अध्यक्ष खरीद सको, या तुम किसी प्रतिष्ठित पद पर हो, रिटायर्ड अफसर हो तो भी चलेगा। अर्थात तुम्हें बुलाने का कोई ना कोई फायदा तो होना अनिवार्य है, वर्तमान में या भविष्य में। या किसी ऐसे को बुलाया जाता है जिसमें उन्हें महाकवि होने की संपूर्ण संभावनाएं दिखाई दें। उसने उदास आवाज में कहा, हम इतने खुशनसीब कहां। मैंने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम बदनसीबों के कारण ही साहित्य जिंदा रहेगा, वरना ये महाकवि तो हर रोज कविता की हत्या करेंगे। वह भाषण सुनने के मूड में नहीं थी शायद, उसने अच्छा कहकर फोन काट दिया। पिछले दिनों मित्रतावश एक पुस्तक समारोह में गई। कार्यक्रम करवाने वाले भी मित्र, करने वाले भी मित्र, संचालक भी मित्र, श्रोता भी काफी हद तक मित्र, इसलिए मैं भी मित्रता निभाने गई। मैंने देखा चारों ओर मित्रता ही मित्रता थी, कविता कहीं नहीं थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कानाफूसी शुरू हो गई। एक ओर मेज पर 15-20 पुष्प गुच्छ रखे थे। मेरे मित्र ने कान में कहा, लगता है कार भरकर फूल लाए हैं, शायद हमें भी दें। मैं केवल मुस्कुराई। मेरी बुरी आदत है वक्त पर पहुंचने की। एक घंटा हो चुका था और अभी तैयारियां ही चल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ वक्त बर्बाद करने आई हूँ। आखिर कार्यक्रम शुरू हुआ और पुष्प गुच्छ आदान प्रदान होने लगा। इसको, उसको, तुमको, मुझको, आपको, उन्हें, इन्हें, सबको पुष्प गुच्छ दिए गए। उन्होंने कविता के प्रोग्राम में नाना, मामा, चाचा, ताया, फूफा, ननद, देवर, मौसी, चाची, मामी, मित्र, शत्रु सबको बुलाया था। एक बार तो मुझे संदेह हुआ कि कविता कहीं है भी यहाँ, कहीं यह मुंडन समारोह तो नहीं। जो महाज्ञानी कार्यक्रम करवा रहे थे उनमें मुझे महाकवि की झलक दिखाई दी। वे बस महाकवि होने की कगार पर थे। महाकवि होने की प्रबल इच्छा हर मन में छिपी है। एक स्थापित कवि हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पर केवल कवि होना कोई मायने नहीं रखता। महाकवि जिसे दूसरे शहर के लोग भी जानते हों। उन्होंने दूसरे शहर के कवि को फोन किया, हमारे शहर में आप अपना कार्यक्रम करना चाहोगे। कवि पहले से तत्पर बैठा था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मेरा कार्यक्रम करवा दें, पैसा मैं स्वयं खर्च करूँगा। उन्होंने उसके पैसे से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। महाकवि होने का यह एक लक्षण है कि दूसरों के कार्यक्रम को साकार करना। दूसरे शहर का कवि अकेला नहीं आया, संघ कुछ कवि लेकर आया, जैसे गुंडा कभी अकेला नहीं जाता। अब कार्यक्रम में दो पक्ष थे, दो अलग अलग शहर के कवि लेखक। आपस में कुछ विचार विरोध हुआ और काव्य कार्यक्रम युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया। कई दिन तक इसकी चर्चा होती रही, थूथू भी हुई और कवि ने महाकवि होने की इच्छा को तिलांजलि दे दी। अब वह केवल कवि बनकर अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य सेवा के लिए कवि होना ही पर्याप्त है कवि बाबू। कहीं कोई कार्यक्रम हो तो लोग कवि से नहीं महाकवि से संपर्क करते हैं। महाकवि का एक लक्षण यह भी है कि उसकी जेब में कई कवि होते हैं। वह किसी भी कवि की किस्मत सवार सकता है या बिगाड़ सकता है। वह सवारने पर आए तो तुकबंदी कवि को महान कवि बता सकता है, बिगाड़ने पर आए तो अच्छे कवि को अज्ञानी बता सकता है। लोग महाकवि से बहुत डरते हैं, उससे कभी बिगाड़ते नहीं। वह कवियों को नई नई जगह कविता पाठ का मौका देता है। कवि उसे माई बाप समझते हैं, मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं। जिससे महाकवि नाराज हो जाए उसके बारे में वह कहता है, बस ये बहुत उड़ लिया, अब इसे जमीन पर लाना होगा। वह दूसरों को भी उसे नीचा दिखाने को कहता है, उसे साहित्य की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा देता है। महाकवि किसी राजनीतिक नेता से कम नहीं होता, तुम क्या जानो कवि बाबू। महाकवि साहित्य जगत का ईश्वर है। जिस तरह ईश्वर का सब पर नियंत्रण है, उसी तरह महाकवि भी साहित्य जगत पर नियंत्रण रखता है। वो चाहता है कि अपने इलाके के सभी कवि लेखकों को मुट्ठी में रखे, काम दूसरे करें और गुणगान उसका हो। उसे हर कार्यक्रम में बुलाएं, उसे फूल मालाएं पहनाएं, सिंहासन पर बिठाएं, तिलक लगाएं, अंगरखा उड़ाएं, जय जयकार करें, तस्वीरें खींचें, तस्वीरें अखबारों में छपवाएं, उसे खुदा माने। बस मैं ही मैं, दूसरों न कोई। महाकवि टोपियों का व्यापारी होता है। इसकी टोपी उसके सर, बहुत टोपियां घुमाता है पर अपने सर पर हर बार

0: टोपी रखना नहीं भूलता। अपनी टोपी को वह राज मुकुट समझता है। बेचारे को पता ही नहीं कि राजाओं के दिन लद गए। वह दूसरे कवियों की किताबों पर टिप्पणियां करता है, पर कोई किताब नहीं पढ़ता। वह किताब मात्र देखता है, उसके पास दिव्य दृष्टि है। वह पहला और आखिरी पन्ना देखकर पूरी किताब के विषय में जान लेता है। वह टिप्पणी में ऊल जलूल बातें करता है, उसके भाषण का कोई सिर पैर नहीं होता। कवि लेखक से अपने संबंधों के बारे में बताता है, किताब पर कुछ नहीं कहता। यह माँ कवि की विशेषता है, तुम क्या जानो कवि बाबू। महाकवि स्वयं को दूसरे कवियों से श्रेष्ठ समझता है। वह नए कवियों लेखकों की पुस्तकों में भूमिका लिखता है। उसके पास लिखने के लिए अपनी कविता कहानी कम ही होती है। वह अपनी लेखनी का सदुपयोग किताबों की भूमिका लिखने में करता है। पिछले दिनों कोई अपनी किताब पढ़ने को देने आया। मैंने उसके सामने ही किताब खोलकर पढ़नी शुरू की। दो पंक्तियां पढ़कर ही मैंने पूछा, भूमिका अमुक महाकवि ने लिखी है? उसने कहा, जी, पर आपने तो अभी दो तीन पंक्तियां ही पढ़ी हैं, आपने कैसे जाना? मैंने उत्तर दिया, मैं बस अपने शहर के महाकवियों को जानती हूँ। ये बहुत मेहनत से दो तीन पृष्ठ की भूमिका लिखते हैं या लिखवाते हैं और फिर आजीवन उसे हर पुस्तक पर फिट करते हैं। ये महाकवि का गुण है, आप अन्यथा ना लें। वैसे मैं भी अब बहुत से कवि लेखकों को जानने लगी हूँ, उनके दूरभाष नंबर भी मेरे पास हैं। इक्का दुक्का लोग मुझे भी पूछने लगे हैं कि हमारे संस्थान में कार्यक्रम है तो कुछ कवि चाहिए। मैं उनकी सुविधा अनुसार कवि लेखक भिजवाने लगी हूँ। पिछले दिनों मैंने अपने घर पर गोष्ठी रखी, कई साहित्यकारों को आमंत्रित किया, अपनी विदेश में रहने वाली मित्र को बुलाकर उसका रूबरू करवाया, उसे सम्मानित किया। मुझे लगता है कि मुझमें भी महाकवि के लक्षण आने लगे हैं। शायद मैं भी महाकवि होने की कगार पर हूँ। धन्यवाद।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हिंदी व्यंग वार्ता महाकवि होने की कगार पर। वार्ताकार सन डॉक्टर दलजीत कौर। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण तुसी समात फरमाओ चंदन दास दी आवाज दे विच एक खूबसूरत गजल।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पेश है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, जिंदगी हसीन है तद तक जब तक असी जिंदगी नू मान रहे हैं, जिंदगी नू जी रहे हैं। जब तक यह सह आ रहे हैं तद तक यह जिंदगी है, तो जिंदगी है तो हसीन होनी चाहिए है। जेकर हसीन नहीं है तो फिर बहुत माड़ी गल है जी। इसनू हसीन बनाना पएगा क्योंकि वक्त जड़ा है वह साढ़े हत्थां दे विचों रेत की तरह हर रोज़ हर पल हर सैकेंड गुजरता जा रहा है, निकलता जा रहा है। असी इसनू फड़ नहीं सकांगे। इस करके जब तक यह जिंदगी चल रही है इसनू माण लो, इसनू जी लो। जेकर आपां जन्म दर की गल करिए ना पूरी दुनिया दे विच कि हर रोज़ 24 घंटिया के दरम्यान तकरीबन 363,000 नवे बच्चे पैदा होंदे ने, यानी कि नवी जिंदगी जड़ी है वह इस धरती दे उत्ते आउंदी है, उसकी आमद होंदी है। ते हर रोज़ 24 घंटिया के दरम्यान 180,000 लोग इस दुनिया तो रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया नू छड़ जाते हैं। किन्नी वड्डी गिणती है। तो खुशी की गल है कि दुनिया के विच जिहड़ी जन्म दर है वो तकरीबन मौत दर तो दुगुनी है, यानी कि जिहड़े इस धरती के उत्ते बच्चे आते हैं, नवीं आत्मावां आउंदियां ने, नवी सोल्स आउंदियां ने, वो डबल ने जान वालियां दे नालों। इस करके दुनिया की जिहड़ी आबादी है वह तकरीबन हर रोज़ वधदी चली जा रही है। तो 183,000 जिहड़े ने बच्चे हर रोज़ इस पॉपुलेशन दे विच शामिल हो रहे ने, नवे बच्चे। तो जेकर पॉपुलेशन की गल करिए पूरी दुनिया दे विच तां इस वक्त 830 करोड़ लोग ने ना जड़े वो इस जिंदगी नू माण रहे ने, जिन्हां दे विच साडी भी गिणती शामिल है। मैं भी हाँ, तुसी भी हो, तो जड़े साढ़े सारे जने है दोस्त सुन रहे ने वो भी सारे इस चीज़ दे विच शामिल ने, जिन्हां दे कोल अजे भी जिंदगी जड़ी है वह है और इस जिंदगी नू मानना है, इस वक्त नू मानना है। तो बाकी तुसी सारे सियाने हो क्योंकि जाण दा वक्त तां किसे नूं भी पता नहीं है, ते जाण तो पहला जिंदगी जड़ी मिली है उसनूं जी लेना चाहिए ना। आओ फिर इसे ही खुशी दे विच सुणदे आए प्यारा जिहा खूबसूरत गीत

सारे रंग माणो, जिंदगी दे सारे ढंग जियो, जिंदगी दे सारे पहलुआं तों तुसी जाणू होने चाहीदे हो। बुरा भी जाणो, चंगा भी जाणो, रातां भी वेखो ते दिन भी वेखो, बहार भी माणो ते पतझड़ भी माणो। पर यही तो मुश्किल है कि असी जिंदगी दे इन्ने थपेड़े चलण दे लई, इन्ने धक्के खाण दे लई कदी तैयार ही नहीं हुंदे। मुश्किल किस गल दी आउंदी है कि जिंदगी दे तूफान चलने पैंदे ने, खड्डा विच डिगना पैंदा है, बहुत बहुत वार गलतियां करनियां पैंदियां ने, बहुत बहुत वार पछताउणा पैंदा है। ते ऐ सारे पछतावे, सारियां गलतियां, सारे भुलेखे इन्हां सब दी अग विचों लंघ के ही ना कहिंदे ने कि जिंदगी जिहड़ी है उह जिंदगी बणदी है, जीवन जीवन बणदा है। जिवें सोना अग दे विच तप के ही कुंदन बणदा है ना, एकदम खरा सोना निकल आउंदा है जिस विच कोई खोट नहीं रह जांदी। इसे तरह जिंदगी दे संघर्षां चों तप के लंघिया इंसान भी खरे सोने वर्गा हो जांदा है। सो जिंदगी जिहड़े भी एक्सपीरियंस सानू दे रही है उसनू देखो, सोचो, समझो, सीखो ते अगे वधो।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबने तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो जो एक शायर ने बहुत उम्दा तलाल डार उन्हां दा नाम है और उन्होंने जिंदगी नूं लैके बड़ी सोहनी एक शायरी लिखी है, छोटी जी कुछ चंद लाइना लिखिया ने, लेकिन गहराई इन्नी ज़्यादा है कि वाकई मतलब दिल खुश हो जाता है और समझ आती है कि काश असी भी इदा कर पाईए। कहिंदे ने कि खुदा दी मर्जी ते मेरी मर्जी दे विच जो पेंडा है ओही तां दुख है। ऐ पेंडा इतना वधा लिया है, मैं दुख नूं वड्डा बना लिया है। मैं सोचा है डार कि जो पेंडा वध गया है इहनूं मुका ना देवां, खुदा दी मर्जी नूं अपनी मर्जी बना के इस दुख नूं मिटा ना देवां। है ना कि कहिंदे ने कि भी रब दी जो मर्जी हो रही है, जदों मैं उस दी मर्जी नूं कबूल नहीं करदा, जदों उस दे कीते हुए कम दे विच मैं राजी नहीं हुंदा, उस दी रजा नूं मन्नदा नहीं हां, इह जिहड़ी दूरी पैदा हो जांदी है मेरे विच तां रब दे दरमियान, इही जिहड़ी दूरी है ना उहदी मर्जी दे विच ते मेरी मर्जी दे विच, इही तां दुख है, यही तकलीफ दिंदा है, यही सानू परेशान करता है, यही सानू दर्द दिंदा है, पीड़ दिंदा है। तो जदों यह दूरी मुक जाती है, यानी कि जो रब कर रहा है ठीक है, असी उसकी रजा दे विच राजी हो जाने, तो फिर यह दुख मिट जाता है। जो ओदी मर्जी दे विच ते मेरी मर्जी दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता, तो दुख का नामो निशान नहीं रह जाता। लेकिन हुंदा यह है कि असी इस दी मर्जी नूं कबूल नहीं कर पाते, असी इस दी मर्जी दे विच राजी नहीं हो पाते, मन नहीं पाते, शिकायतां करदे हां, गिले करदे हां, शिकवे करदे हां, तो फिर दुख ही दुख मिलता है, फिर दर्द ही दर्द मिलता है। तो कहिंदे ने कि जेकर तुसी इस दर्द नूं मिटाउणा है, इस दुख तों छुटकारा पाउणा है, तो रब दी मर्जी नूं अपनी मर्जी बनाउणा पएगा। बेशक असी इस दी मर्जी तों एक मतलब चीज़ भी अलादा नहीं कर सकते कि जो रब की मर्जी है वो उत्ते मैं अपनी मर्जी कभी भी चला नहीं सकता, कभी भी थोप नहीं सकता। जो उन्हें करना है वह करना ही है, असी उत्ते कुछ नहीं कर सकते, साड़ी मर्जी चल ही नहीं सकती। तो चाहे असी एदी रजा दे विच राजी रहिए, तो चाहे असी एदी रजा दे विच गुस्से रहिए,

महिला ने दूजियां दी भलाई दे लई अपना सब कुछ दान कर दिता। जी हाँ, मैं गल कर रही हूँ 100 साल दे डॉक्टर के लक्ष्मी बाई जी दी, जिन्होंने पिछले साल अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई यानी कि तकरीबन 3,40,00,000 रुपए एम्स भुवनेश्वर नूं दान कर दिते। उन्हां दा मकसद सिर्फ इको ही सी, वह चाहते सी कि उड़ीसा ते आले दुआले दीआं औरतां नूं कैंसर दा सही ते वधिया इलाज मिल सके। डॉक्टर लक्ष्मी की गल करिए उन्हों का जन्म 1926 दे विच होया सी, यानी कि 2026 दे विच वो पूरे 100 साल दे हो गए। 100 साल की उम्र वो मान रहे ने, और वाकई यहो जे जड़े चंगे इंसान होंदे ने उन्हां दी उम्र भी लंबी ही होनी चाहिए है। वो अपने जमाने दियां सब तो पढ़िया लिखिया महिलावां दे विचों एक सन। उन्होंने कटक दे SBS मैडिकल कॉलेज के पहले MBBS बैच तो पढ़ाई की सी। जी हाँ, उस दौर दे विच जदों कुड़ियां दा पढ़ना भी सबनों गवारा नहीं सी, लेकिन उस टाइम दे विच भी उन्होंने MBBS की पढ़ाई की। इस तो बाद मद्रास तो MD की, फिर अमेरिका दे मशहूर जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल तो उच्च सिक्ख्या हासिल की। उस दौर दे विच एक महिला लई यह सब करना किसी चमत्कार तो घट नहीं सी। उन्होंने 50 साल तो वध समय तक सरकारी हस्पताल विच औरतां दी सेवा की, ते मेडिकल कॉलेज विच प्रोफेसर वजो नवे डॉक्टर्स भी तैयार किए। और अज 100 साल की उम्र विच उन्हां दी इच्छा है कि उन्हां दा योगदान आने वाले डॉक्टरां नूं प्रेरित करे ते कई औरतां दी जान नूं बचा सके। लोग शायद इसनूं सिर्फ एक दान कहणगे, पर दुनिया इसनूं हमेशा एक महान विरासत दे रूप दे विच याद रखेगी। डॉक्टर लक्ष्मी बाई दे इस जज्बे नूं सलाम है। वाकई इन्ना वड्डा दिल जड़ा है ना, वो किसी किसी का ही हुंदा है। नहीं तो अक्सर इंसान की करता है कि सारी उम्र जड़ी है वह दौलत इकट्ठी करता रहता है, धन इकट्ठा करता रहता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी दे लई, उस तो अगली पीढ़ी दे लई, उस तो अगली पीढ़ी दे लई। हर कोई चाहता है कि भी मेरिया सत्तों पुश्तां जड़ियां ने ना वह बैठ के खाण, इन्ना क मैं इकट्ठा कर लाँ कि भई आने वाली पीढ़ियाँ उन्हों कोई काम ही ना करना पवे, आराम फरमाण तो मैनू याद करन। लेकिन उन्होंने देखो कि अपनी सारी जिंदगी तक कमाई जड़ी है वो दूजियां नू दान कर दिती, कि किते उन्हां दी जिंदगी दे विच कुछ चंगा मैं योगदान दे सकां, उन्हां दी जिंदगी नू किते ना किते जड़ा है वह सुखाला बना सकां या बचा सकां। तो इहो जे इंसानां नू वाकई उन्हां दे जज्बियां नू सलाम है। आओ इदां दा ही गीत सुनदे हां।

0: जी हाँ, एहो जे कोई कोई लोग ही हुंदा है कि जेड़ा अपने तो अलावा दूजियां दे बारे सोचता है, और एहो जे लोगों नू वाकई जी उन्हां दे जान तो बाद भी दुनिया याद रखती है, और असी अज जिन्हां लोगों नू याद करदे ने करदे हाँ वह दुनिया दे लई वाकई कुछ ना कुछ अपनी विरासत छड़ गए, अपना जिहड़ा उन्हां दा वडमुला योगदान सी वह दुनिया नू दे गए, तां ही अज उन्हां नू असी बड़े ही माण दे नाल, बड़े ही इज्जत दे नाल, बड़े ही प्यार दे नाल याद करदे हाँ। और जिहड़े लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ दे विच जी गए, चाहे अपने लिए किन्ना भी धन दौलत इकट्ठा कर गए, लेकिन अज उन्हां दा नामो निशान नहीं है। और ऐसे ही कोट दे नाल अज दा ये प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदा है। तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 8:45 होण जा रहे ने। हुण तो कुछ ही पला बाद तुसी सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: first, because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
4: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
3: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2000

0: 2020 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
4: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है। बजट की कोई कमी नहीं है।
4: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
3: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 वज चुके ने। हुण पेश है पंजाबी नाटक ए वी इतिहास है, लेखिका अजीत कौर।
1: बहुत चिर तो एक याद अज भी मेरे जहन च उंज ही उकरी हुई है। भाभी यानी मेरी नानी दे पीर मक्की वाले घर दी, घर दे गुरु ग्रंथ साहब वाले कमरे च जदों मैं प्रसाद लैन गई सां, उदों मैं बहुत छोटी सां। मेरी नानी अखां मिट्टी उत्थे बैठी सी, मैं चुप चाप उत्थे खड़ी रही उन्हां दे अखां खोलन दे इंतजार च। मेरी नज़र सामने कंध ते पई, काली मखमल उत्ते तिले नाल कढ़ी हुई एक तुक सी।

0: जी पिताजी।
1: बेटा तेरी चिट्ठी आई है, लगता है पाली दी है।
0: जी पिताजी, उन्हां दी है।
1: चंगा कुड़िए, मैं जरा गुरुद्वारे होया वा।
0: जी
1: सतनाम वाहिगुरु।
0: मैं पिताजी नूं आखता दिता कि चिट्ठी उन्हां दी है, पर चिट्ठी तां बलवंत भैन जी दी है। पढ़ के देखा तो सही की लिखे।
2: प्रकाश सस्ती अकाल, ये चिट्ठी इकली पढ़ी, पाल बहुत बिजी अजकल, तू आप क्यों नहीं आ जाती? इस तरह किन्ने दिन उत्थे बैठी रहेंगी? भैने तू जिन्नी जल्दी हो सके अपने घर आ जा, तेरे घर विच समझ नहीं आती की लिखा, बस तू आपे आके समझ जाएंगी, बस तू आ जा हूँ।
0: एक केहो जी चिट्ठी है बलवंत भैन जी के इस खात विच कोई ऐसी गल लगती है जिहड़ी लिखी नहीं गई। खैर मैनू बहुत छेती जाना पवेगा।
3: प्रौणे दी चिट्ठी आई लगती है, की कहिंदा है, कदों आ रहे है?
0: नहीं वह नहीं आ सकते, मैनू आप ही जाना पैना है। बीजी तुसी जल्दी नाल मेरी तैयारी कर दिओ, उन्हां नू छुट्टी नहीं मिली ते लिखिया शनिवार दी गड्डी चाड़ा, मैं एतवार नू सवेरे गड्डियों ला लवांगा दिल्ली।
3: अच्छा जी, वह आप आ जांदा तां चंगा सी, बाकी ठीक है जिवें तू कहनी है, तैनू भेज दिंदे आ कल्ली नू दिल्ली, अपनी बोट जैदी कुड़ी नू लै के ध्यान नाल जावीं बच्चा।
0: अज तुसी छुट्टी कर लैंदे, आपा बच्ची नू गुरुद्वारे मत्था टका लैंदे।
4: बेला नहीं, मैं मैनू बहुत सारे काम ने।
0: तुसी तां बच्ची दा मूंह भी नहीं देखिया।
4: तू देख लिया है ना, बस बहुत है।
0: मेरे मगरों रोटी पानी की कोई समस्या तो नहीं हुई? मासी घरों खा लेंदे सी ना टाइम ते।
4: रोटी तो मैं खा आउंदा रहा, पर अज तो बाद जे तू उस घर गई तो जांदी रही।
0: की होया, कोई गल हो गई है?
4: बस नहीं जाना, रोटी करके बेइज्जती की है तेरी भैन की सस ने मेरी।
0: क्यों? मैं अज ही जाके बलवंत नूं पुछ के आउनी आ।
4: खबरदार जे उस घर च पैर भी पाया तां इहो जे लोकां नाल असा कोई वास्ता ही नहीं रखना, बस अज तो बाद बलवंत नाल भी साडा नाता खत्म समझ।
0: भैणे हो मेरी,
4: समझ लै मर गई हो।
0: दो मील ते तक आरे, मैं किद्दां रहांगी?
4: चली जा फिर, चली जा, पर फिर इस घर विच ना आई। चंगा मैं चलिया दफ्तर।
0: हाय मेरे रब्बा, की हो गया इन्हां नूं, दो भैणां आपस विच मिल भी नहीं सकदियां। बलवंत भैन जी ने तां चिट्ठी विच भी लिखिया सी कि वाकई बलवंत दी सस नाल कोई गल हो गई है, पर अपनी सस बारे तां गल बलवंत ने लिख देनी सी। इहदा मतलब गल तां उसे कर दी है, पर बलवंत दी सस नाल नहीं, किसी होर नाल ही है।
4: जदों दी प्रकाश आई है लाहौर तों, तारी नाल खुल के मिलना ही मुश्किल हो गया है। लुक लुक के मिलन विच कोई मजा नहीं, जदों तक इस मनहूस तो छुटकारा नहीं मिलता, तारी नूं मैं हासिल नहीं कर पावांगा। प्रकाश दा कुछ करना ही पवेगा मैनू, कोई तरकीब सोचता। प्रकाश, ओ प्रकाश।
0: जी दसो।
4: की कर रही सी?
0: कुछ नहीं, बस नाश्ता तैयार कर रही सी।
4: निक्की कित्थे है?
0: ओ जी सुत्ती है।
4: आजा बह जा मेरे कोल।
0: लो बह गई।
4: प्रकाशो
0: दसो,
4: तू मेरे नाल नाराज है?
0: नहीं नहीं, मैं तुहाडे नाल भला किवें नाराज हो सकती हाँ?
4: प्रकाशो असल च मैं बहुत शर्मिंदा, जदों दी तू लाहौर तो आई है मैं रत्ता बह के कोई गल ही नहीं कर सकिया तेरे नाल, ते ना ही बच्ची नूं टाइम दे सकिया।
0: नहीं जी ऐसी तो कोई गल नहीं,
4: दरअसल मैं दफ्तर दे काम विच ही उलझा रहा, कम ही इन्ना सी।
0: मैं समझ सकती हाँ तुहाडी मजबूरी।
4: तू कमे या ना कमे मैं सब समझदा, तू चुप चुप रहनी है, ठीक तरह खांदी पींदी भी नहीं।
0: तुहानू तां एवें ही लगदा है।
4: वेखता सही तू किन्नी कमजोर हो गई है, रंग भी पीला हो गया तेरा।
0: तुहानू इंजी लगदा है जी।
4: देख आज तो बाद मैं तेरा पूरा ख्याल रखांगा, ते निक्की नू भी पूरा समां दवांगा।
0: तुहाडे सहारे तां जी रही हां जी मैं।
4: मैं कल डॉक्टर तो पूछ के तेरे लिए ताकत दी दवाई भी लेके आवांगा।
0: शुक्र है वाहेगुरु दा, मैनू लगदा है ओ बुरे दिन एक बदल वांग सी जेड़े गुजर गए, हुण एक बार फिर जिंदगी दा आसमान साफ ते निखरिया होया।

0: नीला निकल आया है। लगता है चंगे दिन मुड़ आए ने। ओह उन्हां दे आन दा टाइम हो गया।
1: प्रकाश
2: प्रकाश की करी जानी है?
0: तुहाडे लई पकौड़े बना रही सी।
2: इन्ना काम ना करया कर, थक जानी है तू।
0: अपने पति दी सेवा करके भी कोई भला थकदा है?
2: अच्छा नाल सच मैं डॉक्टर कोल गया सी। उनू तेरी हालत बारे दस्या। उन्हें आ कैप्सूल दिते ने, रोज दा एक खाना है। आ ले खा ले, मैं जरा बूटियां नू पानी देवां। खा ले जरूर, फिर कट्ठे चाह पीवांगे ते पकौड़े खावांगे।
0: जी खा लैनी आ। इन्हां नू की हो गया? पहला तां आके मेरे नाल सिद्धे मूंह गल भी नहीं सी करदे, हुण इन्ना प्यार ते इन्ना ख्याल की है इन्हां कैप्सूलां विच। खोल के वेखा तां सही भला, एदां लगदा है जिवें कैप्सूलां विच दवाई कोई होर पाई होवे। चाक के वेखा तां सही। थू थू, हाय हाय मैं मर जा, मेरी तां जुबान ही सड़ गई है। एदां लगदा है जिवें सहर होवे। सहर? हाँ हो भी सकदा है, पर क्यों? इन्हां मर्दां दा भी की भरोसा है।
2: खा लिया कैप्सूल?
0: नहीं जी।
2: नहीं दिए कुछ लग दिए? जो भी तू पेकिया तो आई है, तेरे तो तौरे बदले हुए ने। इथों तक कि हुण मेरे आखे लगना भी भुल गई। डोर पौरी मेरे वाल की वेख रही है तू?
0: माफ कर दियो, अगे तो इस तरह नहीं करांगी। दीपो मासी, दीपो मासी
3: आ गई है गुरुद्वारे?
0: हाँ आ गई हाँ। अज तो मासी उन्होंने मैनू सवेरे 5 बजे का उठाया। पहला गुरुद्वारे लै गए, उत्थे सेवा करते रहे।
3: अच्छा,
0: पर सवेर का कुट पानी का नहीं पीन दिता उन्होंने।
3: क्यों? तू गुरुद्वारे लंगर छक लेंदी?
0: किद्दां छक लेंदी लंगर? उत्थे मां दी दाल हुंदी है, जे खा लेंदी तां निक्की दा ढिड दुखना सी।
3: हाय नी, मामा नू कई कई जफर जालने पैंदे ने, तू उत्थों चाह ही पी लेंदी?
0: इन्हां ने पी नहीं दित्ती। मैनू तां इंज लगदा है जिवें इन्हां ने मैनू जानबूझ के भुख्या रख्या है।
3: ओह क्यों?
0: कल दी कोई दवाई जी लियाए ने, कहिंदे ने ओह निर्णय कालजे खोणी है।
3: कादी दवाई है? वेख जाज के खाई, जिन्हां जनानियां दे कुड़ियां जम पैण उन्हां दे बंदे कई कार्य करदे ने।
0: मासी इस करके ते तेरे कोल आई हाँ, उन्हां ने घर जांदे ही कहना है दवाई खा। तू मैनू एक अद्ध फुलका खवा दे, मेरा नीर ना पांदे, आपे दवाई दा कोई घट सर होऊ।
2: प्रकाश
0: जगा है सारे बनेरियां ते मोमबत्तियां?
2: हाँ वे जगा आया, सारिया के कोठिया से जगदिया मोमबत्तियां बड़िया ही सोहनिया लग रही ने।
0: अच्छा मैं भी देखांगी बाद विच।
2: हुण भला की करन लगी हैं तू?
0: सब्जी नूं तड़का लगाउण लगी हाँ।
2: बाद विच लगा लई तड़का, जरा अंदर आ कम है।
0: मैं सब्जी नूं तड़का लगा के हुणी आउनी हाँ।
2: नहीं नहीं पहला आ तू।
0: चंगा दसो की काम है?
2: आ वेख मेरी तली ते की है।
0: दवाई दा कैप्सूल?
2: दवाई दा नहीं, जहर दा कैप्सूल। इस विच संख्या है।
0: ए मैनू क्यों दिखा रहे हो?
2: वेख प्रकाश, मैं तेरे कोलो कुछ लुकोना नहीं चाहता। गल है कि मैनू तेरी बलवंत भैन की ननान तारी नाल इश्क है, ते ओदे बिना मैं हुन रह नहीं सकता। हुन सिर्फ इको रस्ता है।
0: केड़ा रस्ता?
2: ए कैप्सूल जा तू खा ले जा मैं खा लवा, मतलब जा तू मर जा जा फिर मैं मर जावा।
4: पति परमेश्वर हुंदा है, परमेश्वर जो भी कहे उदी रजा सिर्फ खामोशी नाल मन लेन तो सिवा कोई चारा ही नहीं हुंदा। दीए
0: नहीं, अपने सामने ते अपनी मर्जी नाल तुहानू इस तरह खान दिया जहर। जे तुहाडा एहो फैसला है तां मैं खा लेनी है कैप्सूल।
2: ले ले कैप्सूल ते आ रिया पानी दा गिलास।
0: पर इस कुड़ी दा की होएगा? ए नहीं हो सकदा कि तुसी तारी नाल व्याह कर लो ते मैं गोली बन के इस कुड़ी नूं पाल लवां।
2: नहीं नहीं नहीं, ए नहीं हो सकना, तेरे हुंदिया ए नहीं हो सकना।
0: ठीक है तुहाडी

0: अर्जी सिर मथे दे।
1: कुछ नहीं होया मासी, फिकर वाली कोई गल नहीं, लंगर दी रोटी ज्यादा खा ली सू, मां छोलियां दी दाल लगदा हजम नहीं हुई।
2: लंगर दी रोटी ओ तां कल दी भुखी है।

0: कुछ नहीं होया मासी, फिकर वाली कोई गल नहीं, लंगर दी रोटी ज्यादा खा ली सू, मां छोलियां दी दाल लगदा हजम नहीं हुई इनू।
1: लंगर दी रोटी ओ तां कल दी भुखी है, एक रोटी मेरे घरों खा के गई सी, उल्टी च तो खून आ रहा, घबराना थी घबराना, मैं तेरे मासड़ नूं सद्दी आ, ओ डॉक्टर नूं बुला के लियांदे ने, ते नारी लौर तेरे माँ बापू नूं भी फोन कर देंदे ने, इहदी हालत ते बिगड़दी जा रही है।
2: इस बीबी ने कुछ खा लिया है, आ देखो खून दियां उल्टियां आ रही ने, पुलिस केस है, पुलिस नूं इतला करनी पाएगी।
1: हाँ पुलिस नूं इतला कर देने हैं, इहदे माँ प्यो नूं लाहौर फोन कर दिता है, वो सवेर तक पहुंच जाएंगे।
2: ठीक है, मरीज की हालत इस वेले बहुत नाजुक है, हॉस्पिटल ले जान जोगी नहीं है, सो इत्थे इलाज शुरू कर देने हैं।
0: प्रकाश मेरे को गलती हो गई, मैं माफ कर दे, मैं तेरे पैरों से सिर रख के माफी मांगता, तू बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर साहब कहते ना कि सब ठीक हो जाएगा, सारा जहर निकल गया है, नवा खून चढ़ा रहे ने। प्रकाश देख मेरे वाल इंज ना वेख, प्लीज मेरे वाल इंज ना वेख, कुछ तो बोल, मैनु एक बार माफ कर दे, बख्श दे मैनु, मैं तेनु राणी बना के रखांगा राणी, जे जे तू पुलिस नु कोई गल दसी तो मैं जेल विच सड़ जावांगा, ते तू इस संसार विच किवें गुजारा करेगी? एक सजा याफ्ता प्यो दी कुड़ी नु कौन कबूलूगा? तू तू सचमुच देवी है देवी, तू मैनु माफ कर दे, इस पप्पी नु बख्श दे, मैं सारी उम्र तेरे चरण तो के पीवांगा।
3: तुसी निश्चिंत रहो, मैं पुलिस नु कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मेरी चक्की थी की लोड़ पई सी तेनु खुद सिर खान दी, और की कर दी, जदो मैनु उन्होंने साफ साफ कह दिता कि वो तारी बिना नहीं रह सकते, मेरी दुनिया तो उदों ही खत्म हो गई सी, ते इन्हां हालात विच मैं करदी ते की करदी?
4: तू अपनी कुड़ी नूं चुकदी ते साडे कोल लाहौर आ जांदी,
3: तुहाडियां दहलीजां ते बह के सारे खानदान दी इज्जत मिट्टी च रोलदी, भाईआ जी दी पग नूं ताक लाउंदी, मैं तुहाडा हुक्म मन्निया है, जिस घर विच डोली आई सी उहदे विचों ही अर्थी निकलेगी।
4: बस कर दिए बस कर, सानू की पता सी कि तैनू एडे वड्डे इम्तिहान विचों गुजरना पवेगा, मेरी लाडा नाल पाली मेरी धीए,
3: किस्मत दी लिखी नू कौन बदल सकता है?
5: डॉक्टर साहब तुसी मेरी धी प्रकाशो नू चेक कर लिया, हुण कैसी है उहदी तबीयत?
2: सरदार साहब मुबारक होवे, अज तुहाडी धी खतरे तो बाहर आ गई है।
5: सच डॉक्टर साहब, तुहाडा शुक्रिया, किस तरह अदा करां?
2: उसकी लोड़ नहीं बुजुर्गो, ये तो साडा फर्ज है, मेदे दे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए ने।
5: लख लख शुक्र है वाहेगुरु जिन्होंने मेरी धी नूं दोबारा जन्म दिता।
2: तुसी ठीक कहंदे हो सरदार साहब, अज तुसी रब दा नां लैके अपनी धी नूं दाल दा पानी दिओ, कुछ खावेगी तो शरीर में ताकत आवेगी।
5: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब,
2: पर पहला दो तीन चम्मच ही देना, हौली हौली बदलते जाना।
5: जी डॉक्टर साहब।
2: अच्छा मैं चलना जी।
5: चंगा डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत बहुत मेहरबानी।
6: प्रकाशो दी मां
7: की गल है जी?
6: ओ हुण क्यों मुंह लटकाया है, हुण तो खुश हो, डॉक्टर साहब दस गए ने कि हुण प्रकाशो खतरे तो बाहर है, ते नाले कह गए ने कि इनू दाल दा पानी पिवाना शुरू कर दियो, पर पहला दो दो ते फिर बाद विच बता देना।
7: अच्छा मैं हुणे बनानी है दाल दा पानी, दाल पानी वर्गी। चंगा, वाहिगुरु तेरा लख लख

0: संघर्ष के आयामों को देख और कविता रचना से पहले खुद अपने मन को टटोल और फिर देख के कविता कौन से शब्द तुम्हें लिखने को मजबूर करती है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: और बहुत बहुत धन्यवाद राजवंती मान जी, आपने जो रंग भरा है कविता पर और कविता में और कविता के माध्यम से, हम सभी श्रोतागण आपके आभारी हैं। अब मेरी मुराद है जालंधर से प्रसिद्ध शायर वरिंदर अदब जी, वो अपना कलाम लेके पेश होंगे। वरिंदर अदब जी।
2: मैं वरिंदर अदब जालंधर से श्री कृष्ण लीला जी पर कुछ शेर आपकी नजर करूंगा।
0: इरशाद।
2: कन्हैया तुमने ही मेरी कलम को बल दिया है। कन्हैया तुमने ही मेरी कलम को बल दिया है, जो रुक जाऊं मैं लिखते तुमने हल दिया है।
0: वाह वाह।
2: अदब तो था अंधेरी राहों में फिरता भटकता,
0: क्या बात,
2: तुम्हारी ही इनायत ने सुनहरी पल दिया है।
1: बहुत अच्छे।
2: सुनहरी पल दिया है। श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया। श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया, देश धर्म पर मिटने वालों पर था सदा उपकार किया।
1: बहुत अच्छे।
2: जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में। जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में, गूंजी आवाजें नब से हुआ कंस व्यभीत नगाड़ों से। जेल के खुल गए द्वार सभी, जेल के खुल गए द्वार सभी, मोहन के मधुर इशारों से। उसी रोज से कंस का जीना कान्हा ने दुश्वार किया।
1: बहुत अच्छे।
0: क्या बात।
2: संगीन थे पहरे, संगीन थे पहरे, रात अंधेरी, यमुना भी उफान पे थी, वासुदेव को जान से प्यारी, सुरक्षा नन्ही जान की थी।
0: क्या बात।
2: प्रवेश हुए यमुना में जब, प्रवेश हुए यमुना में जब, यमुना भी इसी अरमान में थी, पांव छुए कान्हा के और यमुना ने था सत्कार किया।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: नटखट नंदलाला था अलग सभी वृंदावन के दुलारों से।
0: क्या बात।
2: नटखट नंदलाला था अलग सभी वृंदावन के दुलारों से, युद्ध में कान्हा दौ भैया लड़ पड़ते संग हजारों से। कंस के योद्धा घबरा जाते, कंस के योद्धा घबरा जाते कान्हा की ललकारों से। एक दिन आखिर बाल गोपाल ने कंस का भी संहार किया।
1: बहुत अच्छे।
0: क्या
1: बहुत
0: बात, अच्छे। क्या बात।
2: गोकुल धाम के वासियों पर कान्हा ने राज किया दिल पर, गोकुल धाम के वासियों पर कान्हा ने राज किया दिल पर, नए युग का आगाज किया हर जन ने कान्हा से मिलकर।
1: बहुत अच्छे।
2: देश प्रीत कान्हा की देख
0: जी,
2: देश प्रीत कान्हा की देख, सब ने था नाज किया इन पर, कामना जो कर पाया कोई श्री कृष्ण जी ने वो काम किया। शिशुपाल जो अपने आप में महाबली कहलाता था, शिशुपाल जो अपने आप में महाबली कहलाता था, उसके खौफ से हर एक योद्धा आंखें मूंद रह जाता था, ऐसा हर एक पापी प्राणी श्री कृष्ण जी से घबराता था, दुष्टों को मौत की नींद सुलाकर जन जन पर उपकार किया।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: अच्छे। क्या बात है, क्या बात है।
2: कौरवों ने पांडवों का हक देने से जब इनकार किया, कौरवों ने पांडवों का हक जब देने से इनकार किया, बड़े यत्न किए कान्हा ने, बड़े यत्न किए कान्हा ने, आखिर युद्ध को स्वीकार किया, विराट रूप अर्जुन को दिखाकर गीता ज्ञान उपहार दिया, पितामह ने जान लिया कान्हा को चरणों में सत्कार किया।
1: बहुत अच्छा।
2: गीता का ये ज्ञान है ऐसा, गीता का ये ज्ञान है ऐसा, जैसे हर गहरा सागर एक बूंद जो छू जाए मन को, भर जाए प्रेम से मन गागर, इंसान को चैन है मिल जाता कान्हा के चरणों में आकर, अदब ने लिखा है जो अब तक श्री कृष्ण का है उपकार किया।
1: बहुत अच्छे, बहुत।
2: श्री कृष्ण का है उपकार किया।
0: क्या बात।
2: श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया, देश धर्म पर मिटने वालों पर था सदा उपकार किया।
1: बहुत अच्छे।
2: सदा उपकार।
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत बढ़िया। बहुत खूब अदब जी, बहुत खूब। जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे देश में यह त्योहार दिल से, मन से, भाव

0: से, रंगों से और न जाने किस किस और ढंग से मनाया जाता है। हम सभी श्रद्धेय हैं भगवान श्री कृष्ण के और हम आभारी हैं अदब जी के, उन्होंने वृंदावन, गोकुल और हमारे इतिहास को गौरवान्वित किया। और इतिहास को गौरवान्वित करने का जो माध्यम चुना है कविता, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम आपके आभारी हैं। श्रोतागण बहुत मोहित हुए होंगे ऐसी मेरी आशा है। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय विनोद गोयल जी से कि वो अपना कलाम लेकर पेश हों। आदरणीय विनोद गोयल जी,
1: एक गजल के कुछ अशआर आपको सुनाते हैं।
0: इरशाद।
1: मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की, मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की, जर्द पड़ने लग गई लाली तुम्हारे गाल की।
0: क्या बात, क्या बात।
1: जर्द पड़ने लग गई
0: गाली
1: लाली तुम्हारे गाल की, और आस जिसकी हम लगाकर आज तक बैठे रहे, आस जिसकी हम लगाकर आज तक बैठे रहे, मेरे दरवाजे पे आई प्यार की वो पालकी। मेरे दरवाजे पे आई प्यार की वो पालकी, मालपुओं तक कभी अपनी नजर जाती नहीं, मालपुओं तक कभी अपनी नजर जाती नहीं, जिंदगी अपनी है चिंता सिर्फ रोटी दाल की।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: जिंदगी अपनी है चिंता सिर्फ रोटी दाल की, क्या कहें तुझसे कि तू भी छोड़ कर जाने लगी, क्या कहें तुझसे तू भी छोड़ कर जाने लगी, जिंदगी हमने तेरी बरसों से देखभाल की।
0: क्या बात,
1: जिंदगी हमने तेरी बरसों से देखभाल की, क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी, क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी, ये सुनहरी मछलियां तो थी तुम्हारे ताल की।
0: क्या बात,
1: क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी,
0: क्या बात, क्या बात।
1: ये सुनहरी मछलियां तो थी तुम्हारे ताल की, और अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाए सदा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाए सदा, फिर क्यों उपमा आप देने लग गए कंगाल की।
0: क्या बात,
1: फिर क्यों उपमा आप देने लग गए कंगाल की, और कल तलक बिन खौफ के तुम घूमते फिरते रहे, कल तलक बिन खौफ ही तुम घूमते फिरते रहे, अब तुम्हें पढ़ने लगी क्यों कर जरूरत ढाल की,
0: क्या बात।
1: अब तुम्हें पढ़ने लगी क्यों कर जरूरत ढाल की, हम तो लंगर हाथ में लेकर सदा खाते रहे, हम तो लंगर हाथ में लेकर सदा खाते रहे, आप क्यों करने लगे बातें कटोरी थाल की, आप क्यों करने लगे बातें कटोरी थाल की, और हम तो छोटे आदमी हैं सबको ये कहते रहे, हम तो छोटे आदमी हैं सबको ये कहते रहे, बोल अब खुलने लगी है आपकी हर चाल की,
0: क्या बात।
1: और मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की, जर्द पड़ने लग गई लाली तुम्हारे गाल की।
0: क्या बात, जर्द पड़ने लग गई
1: लाली तुम्हारे गाल की। अब मैं महेश कुमार शर्मा शरण जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजे।
0: शुक्रिया गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आप सबकी नजर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा।
1: इरशाद।
0: तहत में, गमों की आंधियों में भी रही झनकार कदमों में, गमों की आंधियों में भी रही झनकार कदमों में, झुकाया आसमानों को यहाँ हर बार
1: कदमों,
0: झुकाया आसमानों को यहाँ हर बार कदमों में। और शेर है, न खाते हैं किसी के बाप का हम भी हठीले हैं,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: न खाते हैं किसी के बाप का हम भी हठीले हैं, जिए खुद शान से हर पल रहे संसार कदमों में,
1: वाह वाह।
0: जिए खुद शान से हर पल रहे संसार कदमों में, लड़ो ना जात पर ना धर्म पर ना रंग पर साथी,
1: अच्छा,
0: लड़ो ना जात पर ना धर्म पर ना रंग पर साथी, गिरा डालो अभी नफरत भरी दीवार कदमों में, गिरा डालो अभी नफरत भरी दीवार कदमों में, जो तकते थे ना अब तक आज किस्मत के बदलने से,
1: अच्छा,
0: जो
1: तकते
0: थे ना अब तक आज किस्मत के बदलने से, सुबह से आन बैठे हैं गुले गुलजार कदमों में, सुबह से आन बैठे हैं गुले गुलजार कदमों में, रहे

0: तिरंगा देश का हम सब यही चाहें।
1: बहुत अच्छे।
0: रहे ऊंचा तिरंगा देश का हम सब यही चाहें, खड़े हैं आज सीना तान पहरेदार कदम।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शर्मन जी,
0: शुक्रिया,
1: बहुत अच्छे।
0: और शेर है, बड़ी धीमी चली ही जा रही थी जिंदगी मेरी, बड़ी धीमी चली ही जा रही थी जिंदगी मेरी, मिला जो साथ हमदम का पड़ी रफ्तार कदम।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
0: मिला जो साथ हमदम का पड़ी रफ्तार कदमों में,
1: शर्मन जी बहुत खूब,
0: शुक्रिया आदब साहब। लिया जो खींच तूने हाथ मेरी ही हिफाजत का, तवज्जो दीजिए, एक अलग किस्म का शेर है। लिया जो खींच तूने हाथ मेरी ही हिफाजत का, उतरती ही गई इज्जत भरे बाजार, उतरती ही गई इज्जत भरे बाजार कदमों में, किसी मासूम की अजमत लुटी है यह खबर ना हो, किसी मासूम की अजमत लुटी है यह खबर ना हो, उठानी है बड़ी मुश्किल पड़ी अखबार, उठानी है बड़ी मुश्किल पड़ी अखबार कदमों में। और मक्ते का शेर पेश है, उठाकर शान से शर्मन लगा सीने उसे लेना, उठाकर शान से शर्मन लगा सीने उसे लेना, अगर आकर गिरे कोई हुआ लाचार कदमों में, अगर आकर गिरे कोई हुआ लाचार कदमों में, गमों की आंधियों में भी रही झनकार कदमों में, झुकाया आसमानों को यहाँ हर बार कदमों
1: में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
0: तो इस दौर के बाद आशा करते हैं कि सभी शायर कविगण बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि मनों के भाव, अनुभवों के भाव और कविता का माध्यम और हम चार लोग और लाखों करोड़ों श्रोतागण, ऐसा माहौल बनाए नहीं बनता। मैं एक बार फिर से दूसरे दौर में हमारे माननीय राजवंती कौर जी को गुजारिश करूंगा कि अपनी एक और प्रतिनिधि रचना से श्रोताओं को भाव विभोर कीजिए। राजवंती मैम जी,
2: शुक्रिया। एक और कविता का मौका मिला है। मेरी कविता का शीर्षक है डोमस ओरिया की खातिर।
1: डोमस,
2: डोमस ओरिया, नीरो का भवन
0: जी।
2: सिर हिलाने का मतलब हर बार उजालों की स्वीकृति नहीं होता। सिर हिलाने का मतलब हर बार उजालों की स्वीकृति नहीं होता, उनमें लिपटी गहरी परछाइयों से टकराने की जिद भी होता है।
0: क्या बात, बहुत खूब गहरा।
2: उनमें लिपटी गहरी परछाइयों से टकराने की जिद भी होता है, वे उन प्रतिमाओं के निर्माण के हक में नहीं, वे उन प्रतिमाओं के निर्माण के हक में नहीं जिनके समीप जाकर व्यक्ति का कद बौना हो जाता है।
0: क्या बात, क्या बात।
2: जिनके समीप जाकर व्यक्ति का कद बौना हो जाता है, उसका अस्तित्व सिमट जाता है।
0: क्या बात।
2: शब्दों के मधुर जंजाल में घुले रहस्य खुलने लगे हैं, शब्दों के मधुर जंजाल में घुले रहस्य खुलने लगे हैं, उनके अर्थ और तासीर समझ ली है। छिन गए निवाले की गूंज महलों की सीवनों में गुथ रही है, नींव भरभरा उठेंगी किसी दिन।
0: क्या बात,
1: क्या बात,
0: क्या बात।
2: नींव भरभरा उठेंगी किसी दिन, उनके खिलाफ साजिश करके क्या कर लोगे, उनके खिलाफ साजिश करके क्या कर लोगे, जिनके मुट्ठी भर खुरदरे सपने मिट्टी में उगते हैं मिट्टी में बिखरते हैं।
1: क्या बात, क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से पढ़े मैडम,
2: जिनके मुट्ठी भर खुरदरे सपने,
1: इससे पहली लाइन भी दोबारा पढ़े।
2: उनके खिलाफ साजिश करके क्या कर लोगे, जिनके मुट्ठी भर खुरदरे सपने मिट्टी में उगते हैं मिट्टी में बिखरते हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा,
0: बहुत गहरा।
2: उन हथेलियों में लोहा पिघलता है और इस्पात बनता है, उन हथेलियों में लोहा पिघलता है और इस्पात बनता है, रोशनी को वे शीशियों में बांध सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
2: रोशनी को वे शीशियों में बांध सकते हैं, तेल बत्ती डालकर कर सकते हैं उजाला।
1: अच्छा।

0: तेल बत्ती डालकर कर सकते हैं उजाला, उन्होंने मुट्ठी में दिया सलाई दबा ली है।
1: क्या बात है,
0: उन्होंने मुट्ठी में दिया सलाई दबा ली है, उसी से बीड़ी जलती है, दिया जलता है, चूल्हा जलता है, चिताएं जलती
1: है। क्या बात है, क्या बात, बहुत गहरे।
0: उनके घर का 0 वाट का बल्ब झाड़ फानूस से अधिक चमकदार है। उनके घर का 0 वाट का बल्ब झाड़ फानूस से अधिक चमकदार है, वह तुम्हारे डोमस ओरिया की खातिर भू माँ का सौदा नहीं करेंगे। वे तुम्हारे डोमस ओरिया की खातिर भू माँ का सौदा नहीं करेंगे, तुम जिसे बाजार में ले आए वे उसे बिकने से बचा लेंगे। वे उसे बिकने से बचा लेंगे। शुक्रिया,
1: बहुत खूब राजवंती। आजकल छंदबद्ध कविता से आगे बढ़कर मुक्त कविता अपने नए आयाम तय कर रही है, हासिल कर रही है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि आज का युग मुक्त कविता का युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन आपकी नज़र अगर छंदबद्ध कविता हो और एक तरफ मुक्त कविता हो तो यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि भाव किस में ज़्यादा गहरा है। लेकिन भाव अपने आप में कविता का मूल तत्व होता है, तो उसी मूल तत्व को मुक्त कविता के माध्यम से राजवंती मैम अपने आप में एक मुक्त व्यक्तित्व है, मैं ऐसा कहूं तो भी कोई औचित्य
0: बनता है
1: अतिशयोक्ति नहीं बनती।
2: बिल्कुल ठीक।
1: तो मैं अब दूसरे राउंड में हमारे आदरणीय वरिंदर अदब जी को गुजारिश करूंगा कि कुछ शब्द अपने मन के और कुछ शब्द इस दुनिया के हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखें। आदरणीय अदब जी,
3: श्री कृष्ण जी की पुजारण दीदार की तमन्ना करती है, उस पे चंद शेर आपकी नजर है। मेरा प्रणाम लाखों बार एक दीदार की खातिर, मेरा प्रणाम लाखों बार एक दीदार की खातिर, मिला है ये जन्म मोहन तेरे दीदार की खातिर।
1: बहुत खूब।
3: तमन्ना है मेरी इतनी तेरा दीदार पाना है, है जन्मों से जो मन में प्रीत उसको आजमाना है।
2: बहुत अच्छे,
1: क्या बात।
3: सवाली दर्द से वो तेरे कभी खाली नहीं जाता, लगा दे जान की बाजी जो तेरे प्यार की खातिर।
1: क्या बात,
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: तेरा मन ही मन में हर पल दीदार कर रही हूँ, तेरा मन ही मन में हर पल दीदार कर रही हूँ, तेरे आने का कन्हैया इंतजार कर रही हूँ।
1: क्या बात, क्या बात।
3: मेरे मन में सांवरे तू इस कद्र बस गया है, मेरे मन में सांवरे तू इस कद्र बस गया है, तेरी प्रीत का ये सागर नस नस में रच गया है, तेरे दर्श की दीवानी मैं पुकार कर रही हूँ। तेरे दर पे सर झुका है, तेरे दर पे सर झुका है, जन्मों से हूँ पुजारन जोली फैलाए बैठी तेरी प्रीत में बिखारन।
1: क्या बात, क्या बात।
3: कब होगी करुणा तेरी इंतजार कर रही हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: हद हो चुकी है कहना तेरे आने की खबर थी, हद हो चुकी है कहना तेरे आने की खबर थी, क्या लगन थी मेरी झूठी मेरी आहें बेअसर थी।
2: वाह,
1: क्या बात है।
3: मेरी
1: बात?
3: प्रीत है ये पावन फरियाद कर रही हूँ,
1: फरियाद कर रही। क्या बात है, क्या बात।
3: फिजाएं महक रही हैं, घटाएं बरस रही हैं, फिजाएं महक रही हैं, घटाएं बरस रही हैं, तेरे आने की है आहट आंखें बरस रही हैं, रहमत हुई है तेरी दीदार कर रही हूँ, दीदार कर रही हूँ। तो दीदार के सामने कुछ शेर एक अर्ज है कि तुम हो सामने मेरे क्या हाले दिल सुनाऊं मैं।
2: अच्छा,
3: तुम हो सामने मेरे क्या हाले दिल सुनाऊं मैं, सभी तुझको खबर है अपने मुख से क्या बताऊं मैं, तेरी कृपा से सांवरिया तेरा दीदार पाया है, न जाने कितने जन्मों से ये मौका हाथ आया है, तुम्हारी राह में आंखें बिछाए हूँ मैं मुद्दत से, बड़ी मुश्किल से पाया है, नज़र कैसे हटाऊँ मैं, नज़र कैसे हटाऊँ मैं, तेरे दीदार के सम्मुख जहाँ की

0: जन्नते क्या है, तेरे दीदार के सम्मुख जहाँ की जन्नते क्या है, तेरा है हाथ सर पे दो जहाँ की दौलते क्या है। खुशी मन को मिली है जो जिक्र मैं कर न पाऊँगा, लब खुलते नहीं मेहमान तुम्हारी कैसे गाऊँ मैं। तुझे पाकर नहीं कोई ख्वाहिश और अब मेरी, नहीं गम जिंदगी और मौत का अब फासला क्या है।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: मोहन अर्ज है मेरी अपना बना के रखना, काबिल तो मैं नहीं हूँ चरणों के पास रखना, मेरा चरणों में नमन है विश्राम कर रही हूँ, मेरा चरणों में नमन है
2: विश्राम कर रही हूँ। बहुत खूब अदब जी, बहुत खूब,
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: विश्राम कर,
2: बहुत खूब। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय विनोद गोयल जी से कि अपनी एक और प्रतिनिधि रचना प्रस्तुत करें, आदरणीय विनोद गोयल जी।
1: अभी मैडम मान साहिबा ने एक अपनी कविता खुली सुनाई, मुझे एक शेर याद आ गया, वो भी सुन लें
2: जी।
1: बीते पल की एक चुवन भी मन को यदि सहलाती है
2: जी,
1: बीते पल की एक चुवन भी मन को यदि सहलाती है, बीड़ी के टुकड़ों में भी एक अगरबत्ती जल जाती है।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: अब अपनी गजल के चार शेर सुना दें आपको।
2: स्वागत है गोल साहब, स्वागत है जी।
1: जा बसे परदेश में घर, फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए।
3: बहुत अच्छा।
1: जा बसे परदेश में घर, फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए
2: जी।
1: मांगने आए हो तो खाली ना भेजेंगे तुम्हें।
2: क्या बात,
1: मांगने आए हो तो खाली न भेजेंगे तुम्हें, खुल के बोलो आपको मुझसे भला क्या चाहिए।
2: क्या बात, वाह, क्या बात।
1: खुल के बोलो आपको मुझसे भला क्या चाहिए, और खेल का मैदान है फत्तू का पिंगला घर नहीं।
2: क्या बात है, क्या बात।
1: खेल का मैदान है फत्तू का पिंगला घर नहीं, कोई अपनी टीम का लूला न लंगड़ा चाहिए।
2: क्या बात, बहुत खूब।
1: कोई भी अपनी टीम में लूला न लंगड़ा चाहिए, अमन के ख्वाहें मगर ताकत में कम ना आकिए, अमन के ख्वाहें मगर ताकत में कम ना आकिए, अब ना कोई भी हमें सरहद पे झगड़ा चाहिए।
2: क्या बात,
1: अब ना कोई भी हमें सरहद पे झगड़ा चाहिए, आपको तकलीफ का मेरी जो इतना ध्यान है, कोई पगडंडी नहीं सीधा सा रास्ता चाहिए।
2: क्या बात, बहुत खूब।
1: कोई पगडंडी नहीं सीधा सा रास्ता चाहिए। अब ये एक दो शेर मेरी फैमिली के हो गए हैं, ये भी सुन लें
2: जी।
1: चार पैसे दे ना दे पर आपका रखे ख्याल, चार पैसे दे ना दे पर आपका रखे ख्याल, बात जो माने तुम्हारी बस वो बेटा चाहिए। बात जो माने तुम्हारी बस वो बेटा चाहिए, और पोते की चूचू का भी कोई तो कीजिए इलाज, पोते की चूचू का भी कोई कीजिए पक्का इलाज, अब नहीं है क्लास तो सुंदर सा बस्ता चाहिए।
2: क्या बात,
1: अब नहीं है क्लास तो सुंदर सा बस्ता चाहिए, जा बसे परदेश में घर, फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे।
2: गोल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
1: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश कुमार शर्मा शर्मन जी से कि वो अपने कलाम से नवाजे।
2: शुक्रिया गोयल साहब, मैं एक गजल आपकी नजर पेश कर रहा हूं कि ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर।
0: बहुत अच्छे शर्मन जी, बहुत अच्छे।
2: ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं। और तवज्जो दीजिएगा, बोल कर झूठ बता काम उठा कर थैला।
1: अच्छा,
2: बोल कर झूठ बता काम उठा कर थैला, बेवजह घूमते बाजार नजर आते, बेवजह घूमते बाजार नजर आते हैं, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं। और जिनके छूने से ही चल पड़ती थी जीवन गाड़ी,
1: अच्छा,
2: जिनके छूने से ही चल पड़ती थी जीवन गाड़ी, जंग खाए हुए औजार नजर
3: आते,
2: जंग खाए हुए औजार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं। और सोच की आंख में जब गर्द पड़े नफरत की, सोच की आंख में जब गर्द पड़े नफरत की, काम के लोग भी बेकार नजर आते हैं, जो सरे आम करें रोज तिजारत सुर की,
1: सुर की
2: बेसुरे भी उन्हें फनकार नजर आते हैं। और शेर है, घूंट

0: रिश्तों का गला जो भी यहाँ है जिंदा, घोट रिश्तों का गला जो भी यहाँ है जिंदा, जिंदगी में बड़े बेजार नजर आते हैं। और मक्ते का शेर है, आपके पाप में दे साथ यहाँ जो शर्मन, आपके पाप में दे साथ जहाँ यो शर्मन, गर्ज की आंख से दिलदार नजर, गर्ज की आंख से दिलदार नजर आते हैं, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं।
1: बहुत अच्छा शर्मन जी,
0: सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम काव्य गोष्ठी। अज की इस काव्य गोष्ठी दे विच भाग लैण वाले कवि सन राजवंती मान, महेश कुमार, वरिंदर कुमार ते विनोद गोयल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश प्रोग्राम गजलें। इस प्रोग्राम की पहली गजल समात फरमाओ गुलाम अली दी आवाज़ च।

वो जो हो चुका है, वो जो खो चुका है, उसमें तुम्हारी कोई खता भी नहीं। वो जो हो रहा है, वो जो खो रहा है, उसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं। वो जो हो जाएगा, वो जो खो जाएगा, उसमें

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਜ਼ਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭਵਤਾਰਿਣੀ। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा

0: पूरे निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council (DAC) has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also

0: आशक लोग ते कमले रमले दुनिया बड़ी सियाणी चिट्टे दिन ते कालियां रातां खांदे जान जवानी की मुनियाद है बंदिया तेरी तू फानी मैं फानी रंगे जाइए जे दिल जावे ढोल दिलां दा जानी ओ मैं गावां जुगनी। जुगनी ऐसा किरदार जेड़ा कि हुस्न च लबरेज है, हुस्न दी जड़ी जिन्नी सिफत कर सकीए उन्नी घट है जुगनी दी। एक ऐसी एक ऐसा साढ़े सभ्याचार दा वो एक अंग है जड़ा कि गायकी विच ऐसा आया, पर वो थां थां ते उस दे हुसन दी तारीफ हो रही है, पर वो जिंदगी दे असल सच नू नाल दसदी है कि हुसन जड़ा है केवल ते केवल सिर्फ ते सिर्फ वो ही नहीं जिदे करके मेरी तारीफ हो रही है, इन्हें तो एक दिन चले जाना है। तू भी फानी मैं भी फानी की मुनियाद है बंदिया तेरी। सुन रहे सी असी ए जुगनी द रंग मिठा सिंह बंडालवी की आवाज़ दे विच। अगली फरमाइश सानू व्हाट्सएप के जरिए पहुंची है जी, स्वागत करते हैं उन्हों का बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच। सतेंद्र सरताज की आवाज़ दे विच गीत सुनना चाह रहे हैं सज्जन राजी हो जाए। बड़ा प्यारा जहा सुनेहा सानू यह वैसट अफ्रीका तो आया, सैरा लियोन वैसट अफ्रीका के इलाके चो शेख ज़ियाउर रहमान सुन रहे हैं प्रोग्राम नू। ते बड़ा प्यारा जिहा कुछ बोल भी लिख के भेजे ने, हथ फड़ते बीबा मर्ज ना पुछ ना अर्क पीला मैनू कुछ भी नहीं, ना कर बर्बाद दवाइया नू ना टीके ला मैनू कुछ भी नहीं, मैं मर्ज इश्क विच बीमार पिया मैनू यार मिला होर कुछ भी नहीं। शुक्रिया इस सुनेहे नू भेजण दे लई। ते लो तुहाडी फरमाइश ते सतिंदर सरताज दी आवाज़ दे विच अगला गीत सुनांगे। शामिल कलन जी ताज मुहम्मद अंसारी ते गुलाम साबिर राही नू महराज जहां जी नू भी आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो प्रोग्राम सुन रहे ने, इन्हां दा भी स्वागत। अगला गीत सतिंदर सरताज दी आवाज़ च।
1: प्यार हुंदा फुल्लां तों मलूक सोहणिया

0: लटके मारदा झटके नी मेरा दिल फटके आने कितने चलिए चलिए नी आजा नी आजा नी आजा
1: जा जा बिच

0: प्रोग्राम चल रहा जी, स्वागत है। जुड़े ने साडे अगले श्रोते भी फोन लाइन के जरिए कर दें जी नाल गल। स्वागत जी तुहाडा बहुत बहुत।
1: हाँ जी नमस्कार हरप्रीत जी।
0: नमस्कार जी, की हाल चाल?
1: बड़े वधिया जी।
0: दसो केड़ा गाना सुनाइए।
1: मलोड तो बोलदा
0: जी। जी पुष्ण जी स्वागत तुहाडा बहुत बहुत। दसो केड़ा गीत सुनाइए।
1: जगमोहन कौर जी सुना दिओ, कुंड विच नहीं लुकदे सजना नैन कुवारे।
0: वाह जी वाह। लो जी फिर जगमोहन कौर दी आवाज दे नाल वध रहे हैं जी प्रोग्राम दे समाप्ति दे वल। ते शुक्रिया पुष्ण जी तुहाडा बहुत बहुत। जगमोहन कौर दी आवाज सुनदे हैं जी अगला गीत।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तो पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट

झूठ बोल दी लेके छापा छले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले, पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा, पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा, नी दस क्यों पाया सी, नी दस क्यों पाया सी।

ताने मार सौन ने चढ़िया सौन दिया कदों कमलिए हुंदिया रुत्तां रूप गवाउण दिया

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तों तां बलिहारे ही जाया जा सकदा है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करदे ने कि मैनू वड्डे भागा नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू तां उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तों वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुई है। करण करावन हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साई है। उस दी चरण शरण प्राप्त करके निर्भयता प्राप्त हो गई है ते उस दा नाम ही अते शोभा भी हैरान कर देन वाली है। उसे ने ही मेरे सारे कारज रास कर दते हन। ऐसे पूरन गुरु दा मिलाप मैनू प्राप्त हो गया है। इस प्रीत मिलनी सदका मेरे सारे दुख बिनस गए हन। अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारा। सरवण करदे हां इस शब्द का कीर्तन भाई हरजिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे पासों।

0: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उचारण कीता होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीउण दी सोझी पैदा हो गई है। मैनूं हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस परथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने भया भरगासा कोई न पहुँचण हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनों आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शते हैं। उस दे सारे पाप ते पापा की सारी मैल दूर कर देंदे हन। अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार

रह, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्दी व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जसबीर सिंह। परमेश्वर प्रभु तो बलिहारे जान दी बात साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारित शब्द विच करते ने कि मेरी सोने लाल प्रभु नाल प्रीत स्थापित हो गई है। इस प्रीत दी डोरी प्रभु दे हथ विच इस कदर है कि ए प्रीत धागा ना तोड़िया टुटदा है ते ना ही हथों छुटदा है। दिन रात हर वक्त मेरे मन विच वसण वाले प्रभु तू मेरे ते अपनी मेहर करी। मैं तां उस सांवल सुंदर प्रभु दी अकै वड्याई सुन के उस तों वारने बलिहारने जानी आ। हे प्रभु, मैं तेरे दासां दा दास अखवांदा होया बेनती करदा हाँ कि हे ठाकुर प्रभु, मेरे ते इंज ही कृपा करदे रहो, क्योंकि मेरी तां हे लालन प्रभु तेरे नाल ही प्रीत बन गई है। मूह लालन स्यो प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द का गायन कीता है आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द गायन कीता सी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ का कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हो कार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार।

कवन उपमा देओ कवन सेवा सरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कारे हुन मन बच क्रम जान अनत दू

जन गुर रामदास सब विद मान्यो मान तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर राम।

0: सतगुरु कियो दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पवे।
1: जाम गुरु होए वाले तने क्या गारव दीजे, जाम गुरु है वाले लख बाहे क्या कीजे, जाम गुरु है वाले ज्ञान ध्यान आनन पारे, जाम गुरु है वाले शबद साखी सो सच्चे कार, जो गुरु गुरु है न जपे दास पट बेनत कह, जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे।
2: गुर बिन कोर इंदार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अके हथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कल युग, सुनत समाध शब्द जिसके रे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तेहनेरे, पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परे रे, जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।
3: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, पुती जो प्यास पियूस पिवन की, बंचत सिद्ध को बेद मिलायो, पूरन पो मन ठोर बसो, रस बासन सोजो दहन दस्तायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जल्यान तीर भी पास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
0: समर्थ गुरु सिर हथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरन अगन हरयो, निसबासुर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरयो, पनदास सुहास जगत गुरु की, पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ तरयो।
4: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख थारे कर आज, फुंद्रो

पदरड़ा तिन जन दुख पाप कह कत होवे जियो। झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्रण यो शब्द हर हर जपे नाम नव नित अपे रसम एन सरस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइये गुरमुख त्याये अन्न मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो जन्म गुर उधरो जन्म द्वार हर मनियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशव गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्रण।

माया मोह परम पैपुल सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की

दर्शन परसया गुरु का जनम मरण दुख हुआ सिफत खसानी नूर अरसां कुरसां तदठ सचे पातशाह मल जनम जनम दी सजन सच्चा पातशाह सिर संग जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजन सच्चा पातशाह सिर संग जिस पास

संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर शिव संत भगत तिनकी सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी जन्म जन्म की लागी देख मोरचा लग संगत साध सारी ज्यों कंचन बसंतर ताया मल काटी।

हार हार जपन जपहु दिन राति, जप हर हर हर और तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हम नारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन का कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पाज सवारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन का कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पाद सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो हर से है संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी।